FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

0: में विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आपने सुने। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की। भारत हमारी आन है, बान है, शान है, और यहाँ की धरती पर जन्म लेना हम सब के लिए गर्व की बात है। प्रार्थना बस यही करते हैं कि जब भी जन्म मिले इस पावन धरती पर मिले और हम अपनी मातृभूमि के काम आ सकें। आइए सुनते हैं ये देश वंदना समूह स्वरों में।

देशवंदना अभी आपने समूह स्वर में सुनी और आइए अब आरंभ करें आज की ईश वंदना। सबसे पहले लेते हैं गजानन गणपति का नाम, शंकर महादेवन और साथियों के गाए इस भजन के साथ।

श्री गणेश को समर्पित ये भक्ति रचना आपने सुनी शंकर महादेवन और साथियों के स्वर में। भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना में आइए अब लेते हैं श्री कृष्ण गोविंद नारायण का नाम। स्वर है ब्रज सर्वेश्वरी और साथियों की।

इस भक्ति रचना के बाद आइए सुन लेते हैं शिव का नाम। इस भजन को स्वर दिया है रवि चोपड़ा, अविनाश कर्ण और साथियों ने।

आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। और अब अंत में आइए लेते हैं राम का नाम, जो है संसार को तारने वाला और सेतु को संभालने वाला।

0: केशव मधुकर और साथियों के स्वर में इस राम भजन के साथ ही आज की आराधना हम यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। समय है खेती की बात सुनने का। पपीता के खेती विषय पर सामूहिक सुझाव आप सुनेंगे। आज वाचन स्वर नंद कुमार यादव का है।
1: किसान भाई हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, बने काम बूता खेती किसानी के और साग सब्जी के चलत है ना, तो देखो आप मन बर बढ़िया हमन आज फर के बारे में घलो जानकारी लेके आए हवन। पपीता लगात हन तो कतेकन फायदा होही और एकर आमदनी कतेकन होही तेकर बारे में। तो संगवारी हो, चेत रखे बर हमन ल पढ़ते कि जौन पपीता हवे ना तेन अब्बड़ गुणकारी होते।

0: जेला हमन गमला मा, ग्रीन हाउस मा, पाली हाउस मा, कंटेनर मा घलाव लगा के एकर फायदा ल लेवत रहिथन। हमर स्वास्थ्य बर तो एहर बढ़िया माने जाथे। कैसे? कब्ज ले राहत देथे, कैंसर में सहायक होते और कोलेस्ट्रॉल के मात्रा ल घलाव कम करते। तो हमन को पपीता लगाथन तो एकर सुघर लाभ मिलही ना। तो एकर बर चेत रखना है, माटी जौन है ओमा पानी निकासी के बढ़िया ले व्यवस्था रहे। रेतीली चाहे भारी माटी में एकर खेती ला झन करो तो बढ़िया रहते। और 6.5 से 7 माटी के पीएच मान हर है तो सुघर माने जाते। संगवारी हो, कहूँ हमन पपीता की खेती करत हन तो उन्नत किस्म घलो होते, जेला लगा के ज्यादा लाभ लेबो ता तो बनही। एकर उन्नत किस्म में पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, ताइवान, कुर्ग ग्रीन और अब्बड़ कन प्रजाति होते, जेला लगा के किसान भाई मन सुघर लाभ ला ले सकत है। और संगी हो, देखो भुइया के तैयारी बर घलाव चेत रखना है भाई। 2 से 3 पैत तो जोताईच करेज बर लगही। लइका मन जैसे पढ़ते ना तो कापी सिलेट तो लगवेज करते, तैसे हैं भुइया की तैयारी करे बर हमन ला जोताई आखिरी मा गोबर के खातु ला, सरहा गोबर के खातु रहे वाला मिला के बढ़िया ले बरोबर रखना ही। ओकर बाद प्रति एकड़ की दर ले 150 से 200 ग्राम पपीता की बीजा के उपयोग करे बर लगते। और संगवारी हो, बीजा ला उपचारित करना बहुत जरूरी होते। एकर बर 3 ग्राम कैप्टान ले हमन उपचारित करत हन तो बने माने जाते। बुवाई के जौन बेरा है तो अभी के बेरा मा पपीता की खेती ला बढ़िया ले किसान भाई मन कर सकत है। 1.5 x 1.5 मीटर के दूरिया रख के हमन बुवाई ला 1 सेंटीमीटर के गहिला में जौन बीजा है तेला लगात हन तो बने रही। प्रवर्धन विधि के घलाव उपयोग करे जा सकते। संगवारी हो, पौधा ला 25 x 10 सेंटीमीटर आकार के जौन पॉलीथीन बैग है तेमा तैयार करे बर लगते। पॉलीथीन बैग के जौन नीचे कति 1 मिलीमीटर व्यास के हमन 8 से 10 टोड़कू कर देथन तो बढ़िया रही, जेकर ले पानी जौन है तेन हर निकासी हो सके। और पॉलीथीन बैग मा हमन ला का करना है, गोबर के खातु डाल देना है। माटी है, रेती है, बराबर मात्रा में डालबो तो सुघर माने जाते। और बुवाई करे ले पहली बीजा ला 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर ले कैप्टान ले उपचारित कर लेवे। अंकुरण निकले मा 0.2% कैप्टान ले उपचारित करे जाते, जेकर ले गलन के बीमारी हर नहीं होवे। संगवारी हो, जौन पौधा है ओला रोपाई करत बेरा ओमा कोई खातु झन डाले। संगवारी हो, खरपतवार के चेत रखे बर घलाव पड़ते, जेमा हाथ ले निंदाई गुड़ाई करके हमन बढ़िया नियंत्रित कर सकथन। ज्यादा बंद कचरा है तो नुकसान पहुँचाते गा, तो एकर बर घलाव चेत रखे बर पड़ी। ग्लाइफोसेट हवाए ओला 150 लीटर पानी मा 1.5 लीटर लेके खरपतवार में उपयोग करथन तो बने रहते। संगवारी हो, सिंचाई ला हमन मौसम के आधार में करथन तो फसल के बढ़वार हर बने रहते। माटी के प्रकार के अनुसार सिंचाई ला अपनाना चाहिए। और ऐसे हैं जौन रोग रह आ जाते तेकरो नियंत्रण करे ले सुघर होते, जेमा तना सड़न नाव के बीमारी हर देखे ला मिलते। पौधा के तना मा पानी जैसे गीला गीला धब्बा हर दिखत रहते, चारों कोती बगर जाते संगवारी हो। तो एकर बर उपाय अपनाना है, 150 लीटर पानी मा 300 ग्राम M45 के छिड़काव करे ले बने होते। फिर एक ठिन जरूरी चेत रखियो, कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके फसल लगाथन तो बने रहते, उपज और आमदनी दोनों हर ज्यादा मिलते। अब एकरे संग अही कहबो, जैसे किसान तय लेहे देहे वैसे झोक आशीष जी, अन्न धन से तुम्हार घर भरे जुग जियो लाख बरिस जी। राम राम, जय जोहार।
1: पपीता के खेती, इस विषय पर खेती की बात कार्यक्रम आप सुन रहे थे। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर सुरेश वाडेकर का है। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हाँक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नर नारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

श्री रामचरित मानस गान का अंक आज का आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर के स्वर में। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। लीजिए सुनिए नव विहान कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना या DAY NRLM के नाम से जाना जाता है, ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में आरंभ की गई योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। इसमें गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना, उन्हें वित्तीय सहायता देना और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। ग्रामीण महिलाओं को 10 से 20 सदस्यों के समूह में जोड़कर उनका एक स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद की जाती है। सरकार के द्वारा बैंकों से सस्ते ऋण और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। इसके लाभ और कार्यप्रणाली इस प्रकार है। परिवारों को आय बढ़ाने में, उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने में पूरी मदद की जाती है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर लखपति बनाने का उद्देश्य भी रखा गया है। स्थानीय उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन में सरकार स्वसहायता समूहों की मदद करती है और उनसे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनका उन्हें बाजार तक पहुंचाने में और उनके खरीदी बिक्री में भी सहायता करती है। इसमें महिलाओं के साथ साथ महिला किसानों को भी जोड़ा गया है। कृषि सखियों द्वारा बहुत सारे खेती के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिन्हें सरकार आगे बाजार में बेचने का प्रबंध करवाती है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में पहला अंक चालू किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखी गई थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़कर उनकी गरीबी दूर करने का साधन हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चला रही है। इससे सभी को फायदा लेना चाहिए और इससे जुड़कर अपनी आजीविका और साथ ही साथ जीवन को बेहतर बनाने में सरकार की मदद लेनी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस विषय पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नव विहान अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का।

हमारी इसी सभा में सुबह 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, प्रस्तुति श्वेता पांडे की होगी। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई सुनिएगा सुबह 8:30 बजे से, कलाकार होंगे दुखियाबाई मरकाम और साथी और द्वारिका यादव उनके साथी। रोज की तरह आज सुबह कार्यक्रम पेश करेंगे 7:05 से यादों के झरोके से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 बजे से। आपकी पसंद कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 10:30 बजे से। और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय है दिन में 11 बजे से 11:30 बजे के बीच।

शाम की सभा में एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाता है संध्या 5 बजे। आज शाम 5:35 पर युवा दोस्तों को कार्यक्रम युवा जगत प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज की बात का विषय है मैथिली शरण गुप्त का साहित्य संसार। साथ ही क्रम होगा एक पेड़ माँ के नाम, प्रस्तुति नेमी चंद साहू की होगी। ग्राम सभा में आप हमारे साथ होते हैं शाम 7:20 से और हमारे केंद्र से ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें। गीत सुने आप सुनेंगे आज शाम 6:20 और इसका शेष भाग शाम 7 बजे से।

रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रात्रि 10 बजे अनुप्रसारित करेंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा हमारे केंद्र से शाम 5:05 और रजनीगंधा कार्यक्रम में रात्रि 8:15 से।

समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 8 बजे, इसके बाद मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से 8:15 पर, प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से 9:55 और 11:55 पर हम अनुप्रसारित करते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज शाम 5:35 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवा जगत में आज की बात का विषय है मैथिली शरण गुप्त का साहित्य संसार और क्रम होगा एक पेड़ माँ के नाम अभियान। प्रस्तुति नाम नेमी चंद साहू की होगी। 7:20 पर सुनिएगा ग्राम सभा, जिसमें लोक संगीत, भेंटवार्ता और मंडी मौसम के हाल के साथ सामयिक सुझाव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में संस्कृत और फिर 7 हिंदी में समाचार क्रमशः आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः, मानसिक रूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः, अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य

0: किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय संघटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युवा कार्य क्रीडा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रीय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापि जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्यप्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभाक्षेत्राणाम् उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 वादने मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 वादने मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणनापट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। 11 दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्यसमारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत्पदकैः सह पदकतालिकायां 4थं स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु

0: कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का चौथा युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आपने सुने। एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का। आज का नया दिन, सावन का पहला सोमवार और हमारे कृषि प्रधान देश में सावन केवल वर्षा ही नहीं, अच्छी फसल की आशाओं के साथ साथ सुख समृद्धि और ढेर सारे पर्व त्योहार लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला बातों, गीतों और संदेशों का।

कार्यक्रम आज सुबह में सबसे पहले ये पंक्तियां, गगन में घन है घिरने लगे, मुदित चालक भी फिरने लगे, घट गया रवि तेज कराल है, अब मनोहर पावस काल है, झुलस जो तरु थे तप से गए,

झुलस जो तरु थे तप से गए, लह लहे अब वे सब हैं बहे। न अब आतप ताप रहा कहीं, दुख बिना सुख है मिलता नहीं। श्रोताओं, ये मधुर पंक्तियां वर्षा वर्णन की राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की हैं, जो खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के इतिहास में दद्दा नाम से जाने जाते थे और अपनी रचनाएं लिखा करते थे। आपकी कृति भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, आजादी के आंदोलन में इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई कि महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। वे बड़ा सम्मान करते थे और उनकी कविताएं बड़े चाव से सुना करते थे। मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है हमारे देश में। 3 अगस्त 1886 को जन्मे गुप्त जी स्वभाव से लोक संग्रही कवि थे। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ सुधारों, जागरण के साथ प्रकृति प्रेम और संवेदनशील रचनाएं लिखने में सिद्ध हस्त थे। पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, रंग में भंग, मातृभूमि और विष्णुप्रिया, किसान जैसी कई रचनाएं आपने लिखी थी। यहाँ तक कि नहुष पर भी उन्होंने एक बेहतरीन रचना लिखी थी। परंतु साकेत एक महाकाव्य था जो राम कथा पर आधारित था और ये सबसे अधिक प्रसिद्ध कविताओं और प्रसिद्ध रचनाओं में माना जाता है। आप राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। 1954 में पद्मभूषण पुरस्कार के साथ साथ अनेक साहित्य पुरस्कार मैथिली जी को दिए गए थे। आज कवि दिवस पर मैथिली शरण गुप्त जी को हमारा पुण्य नमन और स्मरण। इसके साथ साथ आज हम याद करेंगे शकील बदायूनी को, जिन्होंने लिखा है, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। लेकिन इनके बारे में बात करेंगे सावन के इस प्यारे से गीत के बाद।

0: सावन हो या फिर रेगिस्तान या फिर गर्मी की तपन या फिर पानी की कमी, ऐसे हर जीवन के समय के लिए गीत लिखे गए हैं। न केवल लोकगीत बल्कि हमारी हिंदी सिनेमा में भी बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे गए हैं, वो भी हजारों लाखों की संख्या में। तो जैसा कि हम अपने श्रोताओं से बता रहे थे कि आज शकील बदायूनी जी का भी जन्मदिवस है। 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश में बदायूं में उनका जन्म हुआ था और उसी से उन्होंने अपना नाम रखा था, शकील बदायूनी। उर्दू के शायर और साहित्यकार शकील साहब हिंदी सिनेमा के गीतकार के रूप में बहुत नाम कमाए थे। 1961, 62 और 1963 में लगातार 3 वर्षों तक फिल्मफेयर के पुरस्कार अपने गीतों के लिए उन्होंने कमाए थे। दिल्ली में नौकरी वे करते थे, सरकारी नौकरी थी, इसके बावजूद साहित्य और गीतकार बनने के लिए वे चले गए थे मुंबई। 1946 में मुंबई पहुंचने के बाद वे मुशायरों में जाने लगे और वहीं पर उनकी नौशाद साहब से मुलाकात हुई थी, जिन्हें उनके लिखे हुए गीत बड़े पसंद आए थे। पहली फिल्म दर्द के लिए उन्होंने एक गीत लिखवाया था, अफसाना लिख रही हूं, जो कि इतना पसंद किया गया कि उसे अपार सफलता मिली। फिर तो 3 दशकों में फिल्मी जीवन में आपने 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे, लगभग 760 से भी अधिक गीतों को उन्होंने सजाया और 14वीं का चांद, घराना, साहिब बीबी और गुलाम, फूल और पत्थर, 20 साल बाद, ऐसी कुछ नायाब फिल्मों के यादगार नाम हैं जिन्हें हम आज भी सुनते हैं और बड़े चाव से सुनाते हैं। श्रोताओं, संगीतकार नौशाद के साथ हेमंत कुमार, रवि, एस डी बर्मन जैसे सभी बड़े म्यूजिशियन ने काम किया था, लेकिन सबसे अधिक काम किया था नौशाद साहब के साथ शकील बदायूनी ने। और उमा देवी हों, मोहम्मद रफ़ी हों, लता मंगेशकर हों, हेमंत कुमार हों, आशा भोसले हों, या फिर उस जमाने के सभी बड़े गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार, सबके लिए आपने गीत लिखे, उन्हें गीत गाकर, उन्होंने गीत सुनकर आपको हमेशा सराहा। और यहाँ तक कि एक गीत था नन्ना मुन्ना राही हूँ, जिसे गाने वाली शालिनी माथुर भी स्वयं को बहुत खुशनसीब मानती थी कि बचपन में ही उन्हें ये फिल्म सन ऑफ इंडिया मिली और उन्होंने ये गीत गाया जो कि अमर बन गया था। और आज भी स्वतंत्रता दिवस हो या फिर 26 जनवरी रिपब्लिक डे हो, इसमें भी ये कार्यक्रम में गीत स्कूलों में और अधिकतर आयोजनों में बजता रहता है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक संदेश सुन लेते हैं।
1: 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वे वंदना कार्ड से।

0: आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
1: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: एक बार फिर से स्वागत कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी का, और अब आइए सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
4: नमस्कार, बिलासपुर जिले की यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के लिए मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान महादेव का पर्व सावन माह का प्रथम सोमवार है। शुभकामनाएं। सभी शिवालयों में बड़ी सुबह से शंख घंटियों की आवाज आ रही है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं खासकर महिलाओं की बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। लोग कतार में हैं, मंदिरों के आसपास भीड़ की स्थिति है। सभी भक्तों से अनुरोध है मंदिरों के आसपास अपने वाहन सड़कों में अव्यवस्थित खड़ी ना करें। साथ ही मंदिरों के आसपास की सड़कों से गुजरने वाले सभी वाहन चालक धीरे चलें, पूरी सावधानी के साथ चलें। अब सड़कों में बोल बम के जय घोष के साथ गेरवे वस्त्रों में कांवड़िए भी दिखाई देने लगे हैं। आप सभी से अनुरोध है सड़क के किनारे चलें, ध्यान रहे सभी सड़कों में छोटे से लेकर भारी से भारी वाहन लगातार दौड़ रहे हैं, इसलिए अपने कांवड़ कंधे में कुछ इस प्रकार रखें जिससे वह किसी भी वाहन के संपर्क में ना आए। मित्रों, आज ही जिले के राजस्व पटवारियों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अपराह्न 11 बजे स्थानीय कोनेर गार्डन में एकत्र होकर दोपहर 12 बजे सभी रैली स्वरूप नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की योजना है। रैली के सभी सदस्य ध्यान दें, आज सप्ताह का प्रथम कार्यालयीन दिवस है। नेहरू चौक के इर्द गिर्द सैकड़ों शासकीय अशासकीय कार्यालय तथा माननीय जिला न्यायालय भी स्थित है। सप्ताह के प्रारंभ में कार्यालयों में लोगों का आना जाना अधिक होता है, अर्थात यहाँ यातायात का दबाव अधिक होगा, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि रैली, प्रदर्शन या ज्ञापन प्रस्तुत करते समय आम यातायात या शासकीय कार्य तनिक भी बाधित ना हो। साथियों, तमाम प्रकार के प्रयासों के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो ही रही हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण वाहनों की तेज गति पाई गई है। तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं के हृदय विदारक दृश्य प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं। मान जाइए, धीरे चलिए, घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
3: धन्यवाद देते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर को इन अपडेट्स के लिए, और जैसा कि उन्होंने कहा कि घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, सड़क पर चलते समय ध्यान रखें। और उन्होंने ये भी बताया कि आज शिवालयों में भीड़ है, साथ ही साथ वहां पर जयकारे लग रहे हैं भोले के। चलिए कार्यक्रम में एक प्यारा सा ऐसा ही गीत गुनगुना लेते हैं।

श्रोताओं, गीत में कितनी अच्छी बात लिखी थी। एक सूर्य है, एक चंद्रमा और एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, नेक बने हम, एक बने हम, एक से सबका नाता। श्रोताओं, हम चाहें कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमारी परंपराओं में जो बातें लिखी हैं उन्हें हम आज भी मानते हैं। और व्रत त्योहार तो साइंस भी यानी कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये हमारे मन को खुशी देते हैं, और अगर उपवास रखा जाए तो इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, आंतों को आराम मिलता है, पाचन तंत्र ठीक होने में मदद मिलती है।

लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मौसम में शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इसके लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर शीतल जल अवश्य लेना चाहिए। आहार में सुपाच्य, ताजे, हल्के, रसीले और सादे पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। तले हुए खट्टे, खटाई युक्त, तेज मिर्च, मसालेदार, भारी और गर्म प्रकृति के पदार्थों का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए। यदि सोमवार का उपवास रखा भी जा रहे हैं तो इस समय भी अपने सेहत की दृष्टि से सेब, बेल, आंवले, मुरब्बा, गुलकंद और पेठे जैसे खाने को अवश्य आहार में शामिल करें। ये लाभप्रद सिद्ध होगा अपने पेट के लिए, साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी। गर्मियों में मौसमी फल तरबूज, खरबूज तो बहुत अच्छे लगते हैं, खीरा, ककड़ी, फालसा, संतरा, लेकिन वर्षा के दिनों में इनका उपयोग कम करना चाहिए, इनका सेवन कम करना चाहिए। इसके बजाय गर्म खाने या गर्म भोजन का अधिक उपयोग करना चाहिए। पानी भी उबाल कर पिए तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखें कि इस ऋतु में भूख सहन करना यानी देर तक भोजन ना करना शरीर में दुर्बलता और कमजोरी लाने वाला होता है। साथ ही साथ चूंकि वर्षा के दिनों में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु हमारे आसपास बहुत प्रबल रूप से घूमते फिरते रहते हैं, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो इसलिए निश्चित समय पर अच्छी तरह से चबा चबा कर भोजन करना बहुत जरूरी है। और जितना ताजा संतुलित आहार हम लेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य और चेहरे की सुंदरता के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भजन के साथ भोजन भी बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए हमें मन को तो सकारात्मक रखना ही रखना है, साथ ही अपने शरीर को भी चुस्त, दुरुस्त और तेजवान बनाए रखना है। और इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम आज सुबह का समय हो चला है समाप्त। तो आपकी हंसते मुस्कुराते खुशनुमा दिन की शुभकामनाओं के साथ हम ले रहे हैं विदा। नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की झरोखे से। आज शकील बदायूनी जी का जन्म दिवस है, तो कार्यक्रम में बहुत सारे गीत हमने उन्हीं के लिखे हुए सजाए हैं। पहला गीत आइए सुनते हैं शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में, जादू फिल्म से।

ये खूबसूरत संगीत था नौशाद का, गीतकार शकील बदायूनी और स्वर था शमशाद बेगम और साथियों का जादू फिल्म के लिए। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दास्तान से। सुरैया के साथ मोहम्मद रफ़ी की मीठी आवाज़ों में ये युगल गीत आप सुनेंगे। नौशाद का ही संगीत निर्देशन है।

मोहम्मद रफ़ी और सुरैया के बाद कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे औलाद फिल्म से हमने लिया है। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में इस गीत को आप सुनेंगे। शकील बदायूनी का लिखा हुआ, इस बार संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड।

0: डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोखे से, और आज हम याद कर रहे हैं शकील बदायूनी को। उनके लिखे हुए कुछ गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म घूंघट से। लता मंगेशकर की मीठी आवाज में, रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को सुनिए।

श्रोताओं, बदायूं में जन्म हुआ था शकील बदायूनी का, लेकिन उनका पूरा नाम था शकील अहमद। घर पर ही उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी की प्रारंभिक शिक्षा ली थी और 1942 में विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी। शिक्षा के बाद वे नौकरी करने दिल्ली चले गए थे और सरकारी विभाग में नौकरी करते रहे, लेकिन उनका शौक था शायरी करना और साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना। नौकरी के साथ साथ वे मुशायरों में हिस्सा लेने जाने लगे और वहां उनकी रचनाओं को बहुत सराहा जाता था। उनकी आवाज में जब वो गाते थे तब उन्हें सबके सब बहुत पसंद करते थे। इसी के चलते 1946 में शकील बदायूनी मुंबई आ गए थे, जहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद से और निर्माता A.R. कारदार से हुई थी। इन्होंने भी उन्हें बहुत सराहा और 1947 में ही फिल्म दर्द के लिए उन्होंने गीत लिखे, जो कि काफी सफल रहे थे। फिल्मों के हिसाब से गीत लिखना ये बहुत जल्दी ढलने का काम शकील बदायूनी ने सीख लिया था। कलाकार ऐसे ही होते हैं जो हर मूड में, हर भावना के लिए हर तरह की रचना कर सकते हैं। लेकिन सदाबहार गीतों में चौदहवीं का चांद हो और मन तड़पत हरिदर्शन को, जो कि बैजू बावरा फिल्म का गीत था,

बेहद अच्छा और इतना ज़्यादा चला ये गीत, इतने ज़्यादा उनके गीत पसंद किए गए थे कि सब के सब उन्हें याद करते हैं इन्हीं गीतों के लिए। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, नौशाद साहब ने संगीत से सजाया था और बैजू बावरा का गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। लेकिन कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बैजू बावरा फिल्म का वो गीत जो कि लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी ने गाया था।

से और भी सुंदर बना दिया था शकील मदायनी के गाने और नौशाद साहब का संगीत निर्देशन। बहरहाल कार्यक्रम में अब सुनते हैं 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया का गीत। श्रोताओं, इस गीत को भी शकील साहब ने लिखा था, लेकिन इसमें आवाज शमशाद बेगम की है मोहम्मद रफी के साथ। चलिए कार्यक्रम में ये गाना सुन लेते हैं।

0: कोई पकड़ ना पाए।
1: ओ गाड़ी वाले
2: ग्रामीण जीवन की चटपटी सी बातें, चटपटी सी आवाज़ शमशाद बेगम की, और उतना ही प्यारा गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। आपका जन्म 3 अगस्त 1916 का हुआ था और 20 अप्रैल 1970 तक वे लगातार सक्रिय रहे अपने जीवन के आखिरी दिनों तक, और 89 फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे और उनकी बहुत सारे गीत मशहूर हुए थे, जिनमें से एक गीत था फिल्म 20 साल बाद का हेमंत कुमार की आवाज़ में। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं ये गाना।

0: ये मीठा संगीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ, हेमंत कुमार का संगीत निर्देशन भी था और उन्हीं की आवाज़ में इसे आपने सुना फिल्म 20 साल बाद के लिए। इसी के साथ आज का यादों के झरोखे से कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, जिसे आपने ट्यून किया है FM बैंड 103.2 MHz पर। 8 बजने को है समाचारों के लिए। अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का

0: शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में

0: सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ी पर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है।

जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है। इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है, तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की

0: गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
3: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka yuva tan se swasth ho, man se swasth ho, aatmavishwas se bharpoor ho aur ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
3: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से

कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे दुखिया बाई मरकाम और द्वारिका यादव के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। आइए पहले शुरुआत करते हैं द्वारिका यादव और साथियों के गाए इस गीत के साथ।

द्वारिका यादव और साथियों के स्वर में ये गीत आपने सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं दुखियाबाई मरकाम और साथियों के स्वर में।

भाटा मुरैबिन, ये गीत आप सुन रहे थे दुखिया भाई मरकाम और साथियों की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत खीरा के पाना, ये आप सुनेंगे द्वारिका यादव और साथियों की आवाज़ों में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई। आइए सुनते हैं अगला गीत दुखियाबाई मरकाम और साथियों के स्वर में।

खोपा में झूला थवर रेशम के जाली हा। इसनो पौधर लगाए मुंह लाली ला, खोपा में झूला।

0: मन बैठे हवै कर्मा के सुनैया, ई मन बैठे हवै कर्मा के सुनैया, ई मन बैठे हवै कर्मा के सुनैया।
1: और लीजिए अब सुनिए द्वारिका यादव और साथियों के सर में ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे द्वारिका यादव और साथियों के स्वर में। और आइए अमराई कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं दुखियाबाई मरकाम और साथियों की आवाजों में।

इसी गीत के साथ आज का अमराई कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, 9 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

गोलमाल थ्री से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान अनुष्का मनचंदा की आवाजों में, कुमार ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से ही। तभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन और साथियों की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

0: ताब हो।
1: किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी, गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

0: जाओगे।
1: यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपरहिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

0: फिल्म कोहिनूर।
1: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो रंग लो।
0: और फिर फिल्म मदर इंडिया।

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

0: 20 अप्रैल 1970 को शायरी
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा में सफल होने वाले प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। सावन महीने का आज पहला सोमवार है, शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में नीट परीक्षा में सफल प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे केवल कुशल चिकित्सक ही नहीं बल्कि संवेदनशील, व्यावहारिक और मिलनसार डॉक्टर भी बने। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में 17 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 परीक्षा में कई बड़े सुधारों की घोषणा की है। इनमें परीक्षार्थियों की यात्रा और परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। ये परीक्षा एक ही पाली में होगी। उम्मीदवार परीक्षा का सेंटर नजदीक के 3 राज्यों में चुन सकेंगे। पहला विकल्प उनका राज्य होगा। इसमें राज्य के ही किसी दूसरे शहर का भी ऑप्शन मिल सकता है। परीक्षार्थी कम्प्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन सिस्टम के जरिए सेंटर चुनेंगे। परीक्षा से 3 हफ्ते पहले सेंटर घोषित होंगे ताकि परीक्षार्थी अपने आने जाने और ठहरने की व्यवस्था कर सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 31 जुलाई के बजाय 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम स्तर पर धान सिंचित, असिंचित मक्का और सोयाबीन तथा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। बालोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 पर कल हुए एक सड़क हादसे में 2 तेज रफ्तार बाइक सवार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद सड़क पर गिरे 2 युवकों को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मरकेली में शनिवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने

0: से ग्रामीण की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है। मृतक सरकारी स्कूल में प्यून के पद पर कार्यरत था। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा का अनुपम दृश्य भी देखने को मिल रहा है। कल रविवार को अमरकंटक से निकली कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त पवित्र जल लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भोरमदेव पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर अमरकंटक स्थित मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी विश्राम और आवश्यक सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर बांसाझाल स्थित जर्जर पुल अचानक दो हिस्सों में टूटकर ढह गया। पुल ढहने के दौरान यात्रियों को लेकर उस पर से गुजर रही बस बीचों बीच फंस गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा में सफल होने वाले प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत। प्रस्तुति श्वेता पांडे की है।
2: संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। आकाशवाणी बिलासपुर ले प्रस्तुत है आप मन के मनपसंद कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। ए कार्यक्रम मा आप मन के मया भरे गोठ बात के संगे संग आप मन के जन संदेश हवय अपन संगवारी मन बर, ए सब ला आप मन ला सुनावत हन ए कार्यक्रम के माध्यम ले। मैं हूँ आप मन के रेडियो मितानिन श्वेता पांडे। चला संगवारी हो तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम के सफर के शुरुआत करथन बने असन मुस्कुराहट के संग। ता देखा थन पहला फोन काखर हवे। हेलो
3: हेलो,
2: जय जोहार, राम राम।
3: जय जोहार, राम राम।
2: कार्यक्रम मा बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। अपन सुघर नाम आओ जी, आप मन के सुघर नाम बता देवा और कहाँ ले बोलत हो तेनो ला बता देवा।
3: मैं बजरंग चौक लोफंदी ले श्यामू देवांगन बोला था।
2: श्यामू भैया, कहाँ चलत है आजकल?
3: मैं अभी कपड़ा बुनाई करत हूँ और आज मित्रता दिवस है।
2: हाँ।
3: तो गाड़ा गाड़ा बधाई।
2: आपो मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई।
3: और 7 अगस्त विश्व हाथ करघा दिवस।
2: हाँ।
3: गाड़ा गाड़ा बधाई है।
2: बहुत बढ़िया जानकारी दे। कैसे बुनता हो आप ओला बता देवा थोड़ा सा।
3: ये रायपुर से आपके धागा हम उनका सोसाइटी के माध्यम से यहाँ वितरण करते।
2: अच्छा।
3: वजन में धागा देते, वजन में कपड़ा लेते।
2: हाँ, तो
3: हम उनका बुन के बस देना है।
2: हाँ,
3: हम उनका मीटर हिसाबों में पैसा मिलते।
2: तो धागा के जिन खासियत है वो करी थे जिन रायपुर से आते।
3: वो कॉटन धागा है, बच्चे मन के स्कूल गर्वेश मिलते है ना अभी।
2: हाँ हाँ
3: हाँ, वही कपड़ा बनता है अभी।
2: अच्छा, वही कपड़ा बनते। आप मन कैसे बुनते होला? का हथकरघा है?
3: हाँ, हथकरघा है। बिलासपुर जिला में है ना।
2: हाँ हाँ,
3: वहाँ पूरा हथकरघा से ही काम होता है।
2: कौन कौन जगह पे?
3: हमारे यहाँ जैसे आसपास में रानी गांव में है, लखराम अकलतरी में है, तखतपुर में है, गनियारी में है, लोखंदी में है। यहाँ सब हाथी करघा से काम होते है।
2: बहुत बढ़िया। तो आप काखर ले सीखे हुए काम ला?
3: ये तो बचपन से कर रहे हैं।
2: अच्छा, मतलब पारंपरिक रूप से चलत रही से आप मन के घर में?
3: हाँ, पूरा पारंपरिक।
2: जिन जिन घर में ये काम होते हथकरघा ले बुनाई के जिन काम होते तीन तो परंपरागत रूप से चलत आत हो ही हर जगह।
3: हाँ हाँ, परंपरा।
2: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करते हो आप। अच्छा जानकारी भी दिए हो हथकरघा के बारे में, जिन बुनाई है एक बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के फोन करे पर भी और इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी दे पर।

0: राम राम, जय जोहार भैया।
1: राम राम, जय जोहार।
0: हेलो।
2: हाँ, राम राम दीदी।
0: राम राम भैया, जय जोहार।
2: हाँ, जय जोहार दीदी। आकाशवाणी बिलासपुर के सब उद्घोषा कर सभी कर्मचारी जम्मो भाई बहनी मल्ला हरियाली तिहार के गाड़ा गाड़ा शुभकामनाएं बधाई है दीदी।
0: आप मल्ला अग्रिम बधाई है कार्यक्रम के माध्यम ले तिहार के।
2: हाँ,
0: अब नाम जिन जगह है आप मन के तेल बता देते हो।
2: हाँ दीदी, मैं हाँ आप मन के जुन्ना संगवारी सुनैया संगवारिया और राधेलाल ग्राम पहुँच गोठियावत हूँ दीदी। आप मन कौन गोठियावत है?
0: मैं श्वेता पांडे गोठियावत हूँ भैया।
2: हाँ दीदी, राम राम, जय जोहार।
0: आपो मन ला भैया, आओ बतावा।
2: अब बढ़िया है दीदी, अब खेती किसानी के आनंद ले।
0: हाँ।
2: अब हरियाली तिहार के अगोरा में देहावन भाई, अब दो चार आठ दिन में हरियाली तिहार आने वाला है, तब ओकरे अगोरा महावन दीदी काबर के हरियाली तिहार एक बड़े सुंदर ढंग से त्योहार है न दीदी। साल के पहली बार त्योहार है, ये पहली बार त्योहार न दीदी। सबो सुनैया संगवारी भाई बहनी मल्ला कहा था कि बढ़िया प्रेम पूर्वक से भाईचारा से बढ़िया ला निभाना चाहिए और मानना चाहिए। जोन की यह पहली बार त्योहार है दीदी, तो पहले त्योहार है बढ़िया से सुघर निपटते ना, तो आने वाला है और त्योहार मन घलो बढ़िया सुघर सुघर निपट रहे।
0: एकदम सही बात बोला था भैया, छत्तीसगढ़ के जिन पहला तिहार है तेन है हरेली तिहार है और बहुत धूमधाम ले मनाए जाते है तिहार है। आजकल तो अपन जिन आने वाला जिन पीढ़ी है अभी जिन जितका भी लड़का मन है तेन मन ला अपन जिन परंपरा है अपन संस्कृति है तेन ला बचाए बर आगू लावत है। स्कूल माँ कॉलेज मन में भी हरेली तिहार बहुत धूमधाम ले मनाए जाते आजकल।
2: हाँ दीदी, हाँ हाँ हाँ, पहली खा रहा है एमा गेड़ी चढ़े के आनंद ज्यादा ले दीदी।
0: हाँ,
2: ये ना झान बुलावा हमार कहना, पहली के पद्धति जो अपन चला था थे ना वो ना बिल्कुल मनाना चाहिए।
0: एकदम सही बात।
2: हाँ, भूलना नहीं चाहिए कहा है। हाँ मना दी ला, आने वाला भी लड़का मन है, छोटे छोटे लड़का मन है, तो हमन पहली गुजरे हन ओला हमन लड़का मन ला बताबो, तो फिर अपन मन के लड़का मन बर वहाँ याददाश्त रही दीदी। और हम ही वाला नहीं बताए रहो तो अभी के लड़का मन अब का जानी, हमन का करें पहली कैसे करें तेला बताबो तभी ना जानी।
0: पीढ़ी दर पीढ़ी जिन अपन संस्कृति है अपन परंपरा है तेन ला बढ़ाना है।
2: हाँ दीदी, और संग संग अभी बहुत सुघर मौका मिले है दीदी, एमा पेड़ पौधा लगाए के बहुत प्रयास करे दीदी, काबर के पेड़ पौधा बहुत ना उजरा जावत है, तो मना पानी पंजा हर चीज के हम मन के नुकसान होते दीदी, सीजन से भी सीजन पानी गिर देवत है। अभी तो अब जी हमारे संगवारी और कहीं से नरेश दास कुधुरमाल वाले हमार कतिबा पानी गिरा थे जी कहा थे, अब कपड़ा लधो के लान के सुखो पारे हो कहा थे, अब हमन कतिबा तो कट कट या घाम करा थे दीदी, तो खंडा खंडा पानी गिरा थे ना भाई।
0: हाँ।
2: तो यह का कारण है? हमरे के कारण है, हम ही मन के कारण खंडा पानी गिरा थे, का बार पेड़ पौधा ला तो हम नष्ट उजाड़ दारे और पेड़ पौधा लगावत नहीं है, तो कोई मना पानी पड़ा फरक पड़ते दीदी। तो हमारे सब सोनैया संगवारी भाई बहनी मल्ला कहा था कि एक एक आदमी कम से कम साल भर में एक एक यदि पौधा हम तैयार कर ले तो हमन आने वाले भविष्य के लिए बहुत हमन ला फायदा मिल सकत है
0: बने के बाद।
2: और दीदी का है पौधा के संग संग फायदा तो जोर मिलते तो मिलते हम लोग बहुत लाभदायक मिलते, फल वाला पौधा लगाए हैं तो घर बैठे हमन ला पैसा आ जाते, हमन ला कहूँ की जाए नहीं पड़े दीदी फल वाला पौधा में।
0: बहुत बढ़िया गोट बात है आप मन के, और ये संदेश भी जाहिए कार्यक्रम के माध्यम ले कि हर एक इंसान जिन्हें एक पौधा जरूर लगावे। आप मन से गोट बात के बाद अब देखा था ना अगला फोन करिया हमार श्रोता कौन हवे।
2: हाँ दीदी, वो हाँ हाँ आकाशवाणी पूरा परिवार मल्ला राधे लाल के तरफ से शुभकामनाएं है दीदी।
0: आप मन ला भैया, जय जोहार, राम राम है।
2: जय जोहार, राम राम।
3: हेलो
0: कार्यक्रम तुहर गोट हमार गीत में लगे है आपन के फोन है।
3: राम राम दीदी।
0: राम राम भैया, बतावा भैया कहाँ ले बोला थो, अपन सुगर नाम बता देवा संगे संग।
3: मैं कर्मा चौक लोहारी डीहा जिला कमरधा छत्तीसगढ़ ले अशोक कुमार साहू बोला था।
0: का हाल चाल है आप मन के अशोक भैया?
3: हाल चाल तो सब बढ़िया है दीदी, पर अब यासी है झरना है, दो तीन दिन हो गए थे
0: ना। हाँ,
3: तब ये भाई गए खेत खार ला देख ही चला थे पार मन ला देखा था ना, मेरे अभी दो तीन दिन हो गए बढ़िया मौसम होला फर आ गए तो ही में थोड़ा सा अरझाया सन था देखे सन खातू तू मार बोई थी के सब ने देखा था दीदी।
0: खातू कहाँ ले लाता आप?
3: खातू सोसाइटी ले लाता था।
0: अच्छा।
3: तब वह मिल जाते तीर में नजदीक में है, अपन धान उपार्जन केंद्र भी नजदीक है दो किलोमीटर के अंतराल में है अपन गाँव।
0: अच्छा,
3: तो वहाँ ले ला रहे थे सब।
0: तो अभी कहाँ खेत में?

0: हाँ खेत में हाँ दीदी का देखे लगते ना खेत ला भले बरहा बियासी झारे है तो का होगे खेत ला घूमबे जाबे देखबे तबे तो खर सबला देखबे पानी हवे कि नहीं कैसे है का मुसवा काटत है का बीमारी थोड़े लगत है सबला देखे लगते दीदी किसान आदमी ला ना जब तक के फसल नहीं कटे ना तब तक के बिल्कुल खेती में ध्यान देने लगते
1: और पूरा देख रेख करे लगते
0: देख रेख करना पड़ते
1: और रेडियो में कौन कौन सा कार्यक्रम आपला अच्छा लगते
0: है मैं हाँ तो ना नियमित होता हूँ मैं हाँ आकाशवाणी के तो मैं ना आप मन के जम्मू कार्यक्रम वाला सुनता हूँ मैं जितने दे तुम्हार वोट हमार गीत हो गए ईमेल करे गीत सुने हो गए अपने रे हलो आपकी पसंद हो गए वो जिन सब होते ना ये सब कार्यक्रम आप मन के ना जिन कर्म सवाल जवाब युवा जगत के सब सभी कार्यक्रम अच्छा रखते दीदी सब लग सुनता मैं
1: आप मन जी से श्रोता है ओखरे कारण तो हमारे सब कार्यक्रम बंद थे
0: भाऊ ना काहे ना थोड़ा सा ना बहुत दिन के बाद लगे ज्यादा खुशी हो गए मोर फोन तुम्हार गोट में बहुत दिन हो गए दीदी नहीं लगा था किसे काहे ना मगर रहे हैं थोड़ा समय बन पात रही से एक आग दूबे ट्राई करा हन हाँ लोखर बाद में कामोल देखना रही समय कसम नहीं ओखले फुर्सत होना दे अभी फुर्सत हो ना दे कोनो हाँ लग गए भैया आज दे
1: बने के बात है भैया फोन लग गया आपके जब का भी प्रयास करत रहे हो आप ठीक है तो अशोक भैया अब आगु जिन है कार्यक्रम ला बढ़ावा थन और दूसर जिन श्रोता है ओखर से बात कर लेते हैं
0: जी बिल्कुल धन्यवाद दीदी बहुत बहुत
1: हाँ जय जोहार भैया
0: जय जोहार दीदी
1: हेलो
2: जोहार
1: जय जोहार भैया
2: जी तुम्हार गोट हमर गीत बिलासपुर
1: हाँ एकदम सही जगह में फोन लगाए हो आप कार्यक्रम के नाम है तुम्हार गोट हमर गीत
2: जी हमन ग्राम सिजदेवरी पलारी जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से बोला था रवि शंकर चंद्राकर दीवान
1: का हाल चाल है आप मन के भैया
2: बहुत बढ़िया है दे पानी कांजी भी बने गिरे है खेती खार के बूता सब चलत है आज मित्रता दिवस है तो हमन सोचता अपन जिंदगानी में कि रेडियो से बढ़ के हमन जिंदगी में कोई मित्र नहीं है
1: सही बात बोलत हो आप हमन भी जब छोटे रहे ना तो इसने लगत रही से हमन ला भी और एकदम आज भी ऐसे लगते कि रेडियो से बड़ा जिन दोस्त है जिन साथी है तेन और कोई नहीं है
2: जी जिंदगी में तो अबारा कन मित्र है पर रेडियो से जो हमला सूचना शिक्षा और मनोरंजन और ज्ञान के खजाना मिलते वो दूसर तरफ से नहीं मिल सके
1: आओ गोट बात बतावा कार्यक्रम के नाम है तुहर गोट हमर गीत तो आप मन के गोट बात शामिल करना है हमला कार्यक्रम में
2: गीत तो बढ़िया है और जिंदगी में चूंकि समय के साथ में हमला चलना है तो पानी गिरा थे तो पानी ला चाके रखना भी बहुत जरूरी है साथ साथ पर्यावरण पर अपन ला ध्यान देना भी जरूरी है और एक पेड़ माँ के नाम के साथ मिला ध्यान में रखत हुआ हमन ला अपन जिंदगी में कई ठन पेड़ लगाए के उद्यम हमन ला करना चाहिए दीदी जी
1: का बात है एकदम बढ़िया संदेश है और हमर जिन श्रोता मन है तेन सुन ही संदेश ला और अमल भी कर ही और बहुत सारा श्रोता मन है जिन पेड़ पौधा लगाते भी पर्यावरण के देख रेख करते
2: तो बात करना चाहता हूँ मित्रता दिवस है तो जो रेडियो के साथी होते वो सच्चा साथी होते दिल से प्यार करते प्यार मोहब्बत और भाईचारा के पैगाम फैलाते तो रेडियो के जम्मो मित्र है अपन ब्यार ला तागे और एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बना के रखे संदेश है
1: बहुत बढ़िया संदेश है आप मन के फोन करे बार और गोट बात करे बार बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के
2: जी सबो संगवारी राम राम जय जोहार
1: राम राम भैया कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत माँ बहुत बहुत स्वागत है
3: धन्यवाद दीदी
1: तो अपन नाम बता दे भैया
3: राम कुशल पटेल बोला था हैदराबाद में हमारे कमान माँ गाँव और मेघा पार लोरमी हरे अब आप मन के कार्यक्रम ला हम नियमित रूप से सुना था मोबाइल ऐप के माध्यम ले
1: हाँ हैदराबाद में रही के
3: हाँ दीदी
1: जत का आप मन काम
3: कार्यक्रम चलते दीदी हाँ। कार्यक्रम आनंदमय जैसे ज्ञान वर्धक जैसे बहुत रोचक थे
1: तो आपके जिन राजमिस्त्री वाले काम है कैसे चलत है
3: बढ़िया चलत दीदी अभी तो दो दिन कस के पानी की छुट्टी रही
1: हाँ, हाँ, हाँ।,
3: हाँ बहुत पानी रही थी वो हाँ काम बुता वर्क करे दोनों जन आए हैं दीदी हमन और लेकिन मन तो घर में है पढ़ाते हैं चार जन
1: अच्छा,
3: है
1: अच्छा, हाँ,
3: दो लड़का है दो लड़की है
1: अच्छा तो लड़का मन यही पढ़ते लोरमी में
3: हाँ गाँव में है दीदी हाँ पढ़ाई में हमारे उमन छोटे लड़का नौवीं पढ़ा थे लड़की है ग्यारहवीं पढ़ा थे एक जन के अभी कॉलेज में फॉर्म नहीं आए अभी तक
1: तो अभी
3: चार दोस्त तक नाम लेवा का दीदी
1: हाँ भैया स्वागत है आप मन के
3: ये दे वहाँ मेघापारा ले मनोज साहू है सहजपुर ले छोटकू साहू मदनपुर कमरदा ले श्रवण साहू जी है
1: तो ये मन सब आप मन के जिन

0: मित्र मन है तेन आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते
1: हैं, आकाशवाणी सब जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, जुड़े हुए हैं।
1: हाँ, सब आकाशवाणी में चिट्ठी पत्री ईमेल से में सब चलत है।
0: ठीक है राम कुशल भैया, बहुत बढ़िया लगी से, और आप मन कुशल रही है, स्वस्थ रही है, तो हम अनला भी खुशी हुई है ना, काबर आप बहुत दूर में काम कर रहे थे।
1: कौन बोला था दीदी?
0: मैं श्वेता पांडे बोला था भैया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: ठीक है, तो आप मन से गोट बात के बाद अब आप मन ला सुनावत हन ए छत्तीसगढ़ी लोकगीत जवाहरलाल बघेल।

0: रामायण में व्याख्या काम करता हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ कबीर साहब के भजन सब है जब सब चलते जाथन हम सब हमारे कार्यक्रम 12 महीना चलत रही थे छठी रामायण है घर उर बनते घलो सब जाथन हम सब कार्यक्रम
1: गाँव में तो ये परंपरा अभी तक जीवित हवे काबर जैसे जैसे शहरीकरण हुआ थे वैसे वैसे जिन बहुत सारा पुराना जिन चलत रही से परंपरा ये छठी है आउ मतलब सुख दुख के जतका भी संस्कार होते ओमा रामायण और सब चीज करात रही पहली लोक कला लोक परंपरा
0: अब धीरे धीरे अभी हवा पुराना श्याम मंदिर में अभी सब कायम रखे दीदी सब हमारे पुराना सब संस्कृति ला ओला देख के दे सब हमू मन अपन गांव में परंपरा बना रखे की सौनाही रामायण है सौनाही जन तिहार होते है सब हम सब है गांव बनाए वाला सब काम चलते है हमरो यहाँ
1: बहुत अच्छा काम करत हो आप सुन के बहुत ही अच्छा लगत है एकदम मया हाउ बाढ़ जाते है इसे में
0: हाँ से तो दीदी अब का सब एक मिल के सब एक जगह होता ना त्योहार के दिन तो सब अच्छा लगते वाला गांव के सब एकता बढ़िया बन जाते
1: बहुत अच्छा जानकारी दिए हो आप जितका भी काम करते हो तेने भी बहुत अच्छा लगी सुन के हमन ला और इसने मया पीड़ित बना के रखिया हमर संग हमर कार्यक्रम के माध्यम ले आकाशवाणी के जितका भी कार्यक्रम है ओकर माध्यम ले
0: हाँ दीदी
1: हाँ राम राम भैया जय जोहार
0: जय जोहार राम राम सेता दीदी
1: हेलो
2: हेलो
1: तुहर गोठ हमार गीत कार्यक्रम मा फोन लगे है आप मन के
2: हाँ दीदी राम राम
1: राम राम भैया
2: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था
1: का हाल चाल है श्रवण भैया तीन ला बता देवा
2: हाल चाल तो बढ़िया है पानी वानी गिरे है लेकिन आज तो बढ़िया घाम हुए है तो अपन बिलासपुर के का हाल चाल है
1: इहो भी घाम आगे है आज
2: हाँ और 2-3 दिन ले पानी बढ़िया गिरी सब है
1: हाँ पानी गिरते तो कई जगह जिन जल भराव की स्थिति रही से तेन में घबरा जाते कि कहीं पिछले बार के जैसे हमारे घर के अंदर पूरा पानी मत भर जावे बहुत नुकसान होते कई बार ये सब चीज में
2: हाँ हम सुने रहे बिलासपुर में बहुत पानी भर गई हवा रास्ता उस्ता घर उर और टीवी वगैरह में समाचार में भी देखते रहे तो थोड़ा सा तकलीफ होते आदमी मन ला परेशानी
1: का करते हो श्रवण भैया आप
2: मैं शिक्षक हूँ दीदी
1: तो कौन सा कक्षा तक पढ़ाता हो आप
2: मैं कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ाता
1: पूरा विषय पढ़ाता
2: नहीं जैसे संस्कृत है और नहीं रहा टीचर तो विज्ञान वगैरह है
1: अच्छा
2: हिंदी है
1: संस्कृत के शिक्षक हो आप संस्कृत प्राचीन भाषा में आते
2: हाँ प्राचीन भाषा है अब हमारा पुराना भाषा है अब धीरे धीरे अब विलुप्त के कगार में है अब शासन प्रशासन भी वो कोर्स समाप्त करे की हवा 9वीं से लेके 12वीं तक ला
1: लेकिन आप जैसे शिक्षक मन रही तो कोई भी विषय विलुप्त के कगार में नहीं रही
2: हाँ
1: ठीक है श्रवण भैया और कुछ गोट बात लेके आए हो आप
2: गोट बात है थोड़ा से बरसात के समय में आदमी मतलब सचेत रहना चाहिए डबरा उबरा है उसमें पानी नहीं भरना चाहिए और ताजा भोजन करना चाहिए बासी भोजन से बचना चाहिए
1: हाँ।
2: यही संदेश कहना चाहता हूँ
1: बहुत बढ़िया संदेश है आप मन के कार्यक्रम के माध्यम ले जतका भी आप मन के श्रोता भाई बहनी मन है जतका भी मितान मन है तेन मन सुनी है कार्यक्रम ला और आप मन के संदेश ला पसंद भी कर ही
2: जी
1: राम राम भैया जय जोहार
2: राम राम जय जोहार
1: हेलो
3: हेलो राम राम दीदी
1: राम राम भैया जय जोहार है आओ बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में
3: धन्यवाद दीदी रोशन देवन बोला था मिले गल्ले
1: हाँ रोशन भैया मैं चिन डाले रहे हूँ आपकी आवाज ला का करत हो अभी
3: बस साड़ी बुनाई करत दीदी
1: का गोट बात है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में
3: अब बस सब तो ठीक ठाक दीदी पानी वानी तो रोज गिरत है हाँ जब साल लगे तब गिरते पानी अब सामान लग गए
1: हाँ हाँ
3: अरे आज तो मौसम ठीक लागत है अभी घाम हुए है
1: हाँ यहाँ भी घाम आए है आज
3: हाँ पता नहीं वो गर्मा तो हवा फिर कद कब गिर दी पता नहीं चले
1: मौसम के कोई भरोसा नहीं है अभी कभी भी गिर जाते पानी कभी धूप कर देते ऐसे में फिर आसमान में देखे माँ कई बार इंद्रधनुष दिखाई देते लड़का मन तो अतका खुश हो जाते काबर उमन बर बहुत नया रही थे ना इंद्रधनुष और बताओ भैया
3: बस ठीक ठाक है बढ़िया आप मन कार्यक्रम वाला सुना था सब ला सुना सुन बुता काम करते हैं दीदी दिन भर
1: हाँ अच्छा तो कौन कौन सा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगते हैं आप मन ला
3: छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम बढ़िया लगते दीदी जबकि जबकि भी छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आते हैं जैसे आप मन गीत है आज सांझ के तुम्हार गोठ हमर गीत है और माटी के स्वर थे
1: हमन ले ज्यादा आप मन ला याद रही थे कतका बेर कौन सा कार्यक्रम आते कहीं

0: हेलो,
1: हेलो।
0: तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम में स्वागत है।
1: हाँ राम राम दीदी,
0: कौन मयारू मितान बोला था हमर?
1: मैं देवरी भाटा पारा ले गन्नू लाल रजक बोला था दीदी।
0: गन्नू लाल भैया, कैसे हो आप मन?
1: बहुत अच्छा दीदी। हमर गांव आज ले सोनाही तिहार चालू हो गए, इतवार तिहार है।
0: हाँ,
1: और काली ले हर सोमवार के हमन रामायण मंडली वाले हमारे सत्संग मानस मंडली चलते तो गांव में हर सोमवार के 5 बजे साहू धर्मशाला में रामायण के कार्यक्रम घलो चालू हो जाये।
0: अच्छा, हाँ अभी तो पूरा सावन मा पूरा गांव गांव में रामायण चलते, शहर में भी सब जन कोई कोई शिव महापुराण करवाते, तो कई जगह पे रामायण के पाठ करते।
1: आओ दीदी, ओकर बाद में यदि 15 अगस्त घलो आ जाते, हरेली तिहार घलो आ जाते सब।
0: हाँ,
1: आओ तो ये सावन महीना में पूरा तिहारे तिहार है हमारा, अगस्त महीना में। और हमर मन के ये रेडियो श्रोता मन के सम्मेलन घलो हो दीदी 1920 अगस्त के भिलाई में।
0: हाँ,
1: और तो सब श्रोता मन वहाँ जुड़ी आबो 1920 तारीख के, सब वह सहयोग सब ये करत हम सबके जुड़ मिल के।
0: अच्छा है, सहयोग से ही कार्यक्रम जिन्हें सफल हो जाते।
1: हाँ, कार्यक्रम ले सेता दीदी हमन बार बार सुनते हमारा अच्छा लगते।
0: हाँ, का करो था बतावा, कुछ गाना वाना गाता हूँ अपना?
1: मैं है पनवानी कार्यक्रम घलो दीदी हमर मन के, तो मैं रागी काम करता हूँ, मोर भाई सहदेव रजा का गाते तो मैं

0: हाँ दीदी, काहे दिन भर अमन सुनत रहता ना।
1: हाँ
0: अब मैं दिन भर में कम से कम 15 आकाशवाणी में जुड़ था दिन भर में।
1: अच्छा।
0: हाँ सब लगातार सुबह चालू होते, जैसे उमंग कार्यक्रम आते, कापमन के यहाँ वाला आते, 11 बजे आते उमंग कार्यक्रम, वो में सवाल जवाब भेजन।
1: अच्छा
0: तो कुरुक्षेत्र में 7:10 में पहली प्रसारण थे होकर।
1: अरे वाह।
0: हाँ तो हम वो उमंग के जो जहाँ प्रसारण थे ना, ओकर अधिकारी अधिकारी सबसे मिल के आ गए हम अगले साल के। हाँ दिल्ली में NTCR में ऑफिस आवे, जो अजीत जी बिमले जी हवे के मेन, और कुसुम लता है, जगबंधु है, और डॉक्टर साहब है, सबसे मुलाकात हो गए है।
1: गजब भैया, हमार मुलाकात नहीं हुए है। आप मन के मुलाकात
0: नहीं, हो जाए आप मन से मुलाकात हो जाए।
1: हाँ। नहीं आप मन ला देखा था मैं, आपका वो रही था, आप मन एक्टिव रही थो ये सब चीज में।
0: अब 6 दिन है 25 दीदी, अब मान ले आज 2 तारीख हो गए।
1: हाँ
0: और 15 दिन तो बाद फिर हमन के रेडियो श्रोता सम्मेलन होने वाला है भिलाई में।
1: हाँ अभी कौ श्रोता से बात हुई से तेनो बतात रही से कि अब भी अब सब जन जुड़ जाबो मिलबो।
0: हाँ 20 अगस्त तक कार्यक्रम दीदी, 19-20 अगस्त तक है रायपुर भिलाई में, और पूरा जितना भी श्रोता है पूरा ऑल इंडिया सब वही वहाँ। एक साल में एक बार होते है जगह में, कई साल छत्तीसगढ़ में मिल रहे।
1: बहुत बढ़िया है।
0: हाँ
1: ठीक है भैया, आप मन से गोट बात के बाद आप मन ला सुनवावत हन ये सुघर सन गीत जिला गाये हवे रेखा देवार और साथी मन।
0: धन्यवाद दीदी।
1: धन्यवाद भैया, फोन लगाए पर भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: त संगी हो आज बर एतकेच ए सुघर असन गीत के बाद अब विदा लेके समय तो आगे है ता ए कार्यक्रम निर्माण मा तकनीकी सहयोग दिए है गौरी शंकर कौशिक जीवन औ मैं हूँ आप मन के रेडियो मितानी श्वेता पांडे औ अब तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम ले देवा विदा झोका भई हमर राम राम जय जोहार
1: तुहर गोट हमर गीत ये कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रस्तुति श्वेता पांडे की थी ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है 10:30 हुए हैं अब पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद पहला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म क्रिएचर से अरिजीत सिंह की आवाज में टोनी कक्कड़ का लिखा हुआ उन्हीं के संगीत निर्देशन में गीत जिसकी फरमाइश की है भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा रावण भाटा से बबला यादव रिखी राम और श्रीमती कमलेश्वरी यादव इसी गीत को बनियापारा धमतरी से सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता रामचंद माखीजा श्रीमती सविता बेबी स्वाति और उनका पूरा परिवार टोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है देवशंकर तामुरिया अजय तुषार डॉली बेबी पूजा प्रभा देवी के साथ बन बघेरा गांव से राजनांदगांव के योगेश सरवा आशा सरवा नीरज नीलेश और कुमारी अंजलि सुभाष वार्ड भाटापारा से इस गीत को सुनना चाहते हैं अजय कुमार यादव अमित अमिन यादव गिरीश करण युवान डाबेश सेवक राम टुपेंद्र और हदबन देवधा से उनके साथ ही हैं लच्छनपुर से शिवनाथ विश्वनाथ साहू पंकज साहू तिरुपति साहू धनक धनय और आरू साहू

श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म क्रिएचर से, और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में ताल फिल्म से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है एआर रहमान ने, और अनुरोध हमारे इन श्रोताओं का है। हथकीरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बिलसपुरिया, ग्राम रोहासी से चिट्ठी आई है डगेसर राम, नूतन साहू, गौरव साहू और घनश्याम साहू की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश और आपके साथ वासु डॉली, पूर्वेश साहू। कटघोरा गांव चुराली से देवचरण पटेल, अंजोरमती पटेल, भूपेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, दक्ष कुमार, दिव्यांश कुमार और कुणाल कुमार पटेल।

0: ताल से ताल मिला ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद में। आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स।
1: नमस्कार, बिलासपुर जिले की यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के लिए मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान महादेव का पर्व सावन माह का प्रथम सोमवार है। शुभकामनाएं। सभी शिवालयों में बड़ी सुबह से शंख घंटियों की आवाज आ रही है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं खासकर महिलाओं की बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। लोग कतार में हैं। मंदिरों के आसपास भीड़ की स्थिति है। सभी भक्तों से अनुरोध है मंदिरों के आसपास अपने वाहन सड़कों में अव्यवस्थित खड़ी ना करें। साथ ही मंदिरों के आसपास की सड़कों से गुजरने वाले सभी वाहन चालक धीरे चलें, पूरी सावधानी के साथ चलें। अब सड़कों में बोल बम के जय घोष के साथ गेरवे वस्त्रों में कांवड़िए भी दिखाई देने लगे हैं। आप सभी से अनुरोध है सड़क के किनारे चलें, ध्यान रहे। सभी सड़कों में छोटे से लेकर भारी से भारी वाहन लगातार दौड़ रहे हैं, इसलिए अपने कांवड़ कंधे में कुछ इस प्रकार रखें जिससे वह किसी भी वाहन के संपर्क में ना आए। मित्रों, आज ही जिले के राजस्व पटवारियों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अपराह्न 11 बजे स्थानीय कोनेर गार्डन में एकत्र होकर दोपहर 12 बजे सभी रैली स्वरूप नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की योजना है। रैली के सभी सदस्य ध्यान दें, आज सप्ताह का प्रथम कार्यालयीन दिवस है। नेहरू चौक के इर्द गिर्द सैकड़ों शासकीय अशासकीय कार्यालय तथा माननीय जिला न्यायालय भी स्थित है। सप्ताह के प्रारंभ में कार्यालयों में लोगों का आना जाना अधिक होता है, अर्थात यहाँ यातायात का दबाव अधिक होगा, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि रैली प्रदर्शन या ज्ञापन प्रस्तुत करते समय आम यातायात या शासकीय कार्य तनिक भी बाधित ना हो। साथियों, तमाम प्रकार के प्रयासों के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं

0: लगातार हो ही रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण वाहनों की तेज गति पाई गई है। तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं के हृदय विदारक दृश्य प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं। मान जाइए, धीरे चलिए, घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: धन्यवाद करते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर को इन अपडेट्स के लिए। और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म थ्री इडियट से। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा हुआ ये गाना है। शांतनु मोइत्रा ने संगीत निर्देशन किया है। फरमाइश इन श्रोताओं की है, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज पारेकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। आपके साथ मारवाड़ी कुआं से हैं सियाराम और अश्विनी पांडे। सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ और हरिओम। शांतिनगर भाटापारा से इस गीत को पसंद करते हैं रमजान खान, सिकंदर अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अलफैज खान, सादिया खान, हजीन निशा, और बिल्हा से शेख नासिर, मजबीन बानो। ग्राम दरचूरा से चिट्ठी आई है, ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम साहू की ओर से। बीट शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल इस गीत को सुनना चाहते हैं।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, जिसे गाया है उदित नारायण और साथियों ने। कुमार सानू भी इस गीत में आपको सुनाई देंगे, साथ ही साथ अलका याग्निक। रानी मलिक का लिखा हुआ गाना है, अनु मलिक का संगीत निर्देशन है और इसे सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से दतरंगी की भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पेपरिया से दुर्गा राम साहू, बावली मर्रा कोना से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार, शिवम कुमार कौशिक के साथ, भाटापारा से द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झाविंद्र कुमार वर्मा, एस कौशिक, ये बिरकोना से हमारे श्रोता साथी हैं जो इस गीत की फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। बिलासपुर जुना पारा कतिया पारा से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन के साथ, बमहर चाटी डी से गंगा देवी, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन भी इस गीत को सुनना चाहती हैं। मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू कुमार, युग कुमार, आप सब मोती गार्डन भाटापारा से, और आपके साथ राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक, युवराज राउत भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी से।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ों में। रानी मलिक का लिखा हुआ गाना और संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। इसी के साथ आज का आपके पसंद कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। जाने से पहले हमारे नए श्रोताओं के लिए अपना पता बता दें, आप हमें अपनी पसंद का गीत, गीत के बोल और अपना पता लिखकर भेज दीजिएगा। कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 नूतन कॉलोनी आकाशवाणी बिलासपुर 495006 के पते पर।

ये आकाशवाणी बिलासपुर है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
3: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
3: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
3: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
3: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
3: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं की बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों

0: में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: रामप्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। रामप्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,

0: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
1: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे।
1: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
3: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
0: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
1: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
3: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
0: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
1: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
0: मां तो मां होती है बस। ऐसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
3: अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
1: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
3: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता

0: की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
0: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए।
2: जी सर।
0: जेल में ही उन्होंने अपनी

0: अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए।
1: जी सर।
0: जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
2: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
0: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर।

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है, परंतु राग की सुंदरता

प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का संगीत, एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

FM बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से। इसके बाद 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। अभी के लिए आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में नीट परीक्षा में सफल हुए प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि यदि युवा स्वस्थ, संस्कारित, परिश्रमी और नशामुक्त रहेंगे तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज से फिर सहयोग केंद्र शुरू किया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में आयोजित इस केंद्र में प्रदेश के मंत्री, कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याएं सुनेंगे। ये कार्यक्रम 7 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश कार्यालय आकर पंजीयन कराना होगा। आवंटित टोकन के आधार पर सुनवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 31 जुलाई के बजाय 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम स्तर पर धान सिंचित, असिंचित, मक्का और सोयाबीन तथा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। दुर्ग जिले में रविवार देर रात धमधार रोड पर लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे 4 बदमाशों ने विरोध करने पर ग्राम तुमाकला के उपसरपंच प्रकाश सिंह कश्यप की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी उनका मोबाइल फोन और करीब 4,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार घटना जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में करहीडीह से चिखली चौक के बीच हुई। जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी समित मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला लूट के दौरान हत्या का प्रतीत हो रहा है। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। भिलाई नगर निगम की महिला पार्षद रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद सिंह राजपूत और पुत्र मानव चंद सिंह के खिलाफ करोड़ों रुपए के भूमि और खनन संपत्ति सौदे में कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद उतई थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा का अनुपम दृश्य भी देखने को मिल रहा है। कल रविवार को अमरकंटक से निकली कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त पवित्र जल लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भोरमदेव पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी रहेगी। जगदलपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुस्कुराता बस्तर थीम पर मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच द्वारा आज विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर कला का प्रशिक्षण देने के साथ ही बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और लोक जीवन को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और

0: कुमार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोंसले की आवाज, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास

0: 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है ये बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पर तुम्हें मिल गया ठिकाना।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज फेसबुक पर जो टेक्स्ट, जो इबारत हमने पोस्ट की है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमारे संस्कारों ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। किसी अनजान शहर में जब कोई अकेला व्यक्ति अपने दिल और निगाहों को चौकन्ना रखकर जिंदगी की तलाश करता है और उससे घर आने की गुजारिश करता है, तब कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। रात भीगी भीगी हो, नदी नारे उफान पर हो, चंदा की चांदनी भी सीने में जलन पैदा करती हो, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमें ऐसा सुकून मिलता है जैसे तपती गर्मी में तरुवर की छांव हो। साथ ही ये आश्वासन भी मिलता है कि एक दिन सुखों की गागर हमारा स्वागत जरूर करेगी। तब सीने की जलन शांत होकर कोई गाता सा प्रतीत होता है और मन ख्वाबों के गलियारों में सो जाता है। ये आज की इबारत है, आपने पढ़ी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, प्रार्थना से संबंधित बातें लिखी और आज के गानों की क्या खासियत है ये भी उन्होंने बातें लिख करके भेजी। हमारे एक साथी की बात है कि आज की इबारत भारतीय जीवन दर्शन को चिन्हित करता आदर्शों का समागम है। ये सत्य को उजागर करता है कि भारतीय मानस में हर यात्रा, चाहे वह भौतिक हो या जीवंत आस्था के सहारे ही शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब प्रकृति भी बैरी लगने लगे, तब प्रार्थना इंसान के लिए अंतिम और सबसे सशक्त सहारा बनती है। ये इबारत अकेलेपन के दर्द, आस्था की शक्ति और उम्मीद के सूर्योदय की एक भावपूर्ण यात्रा है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि आज की इबारत जीवन की यात्रा का सुंदर चित्रण है, जहां हर कदम पर विश्वास, संघर्ष और उम्मीद साथ चलते हैं। जब इंसान किसी अनजान राह पर होता है तो सबसे बड़ा सहारा उसके संस्कार और ईश्वर पर उसकी आस्था होते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को वैसी ही शीतलता देता है जैसी तपती दोपहर में किसी घने तरुवर की छांव। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है कि एक दिन सुखों की गागर भी हमारे द्वार पर दस्तक देगी। धन्यवाद आपका। जी हाँ, आस्था की बात तो है ही, लेकिन साथ ही आज के गानों की एक और विशेषता है जो आपने समझ ली है। हम दोनों फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज है इसमें, सही लुधियानवी के बोल हैं और संगीत जयदेव का। जी हाँ, आज संगीतकार जयदेव को हम याद कर रहे हैं।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार, ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया, प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीतमय सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं, और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है, या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है, वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है? कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया? ये आप

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर जिंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम

धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है। तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं। अगर तुम हो संगीत सागर, हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं। बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना। आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहां रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहां आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती हैं, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरिया फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा जरूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत है उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप जरूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन, या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहाँ हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफर ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाजें हैं।

तेजस्वी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना, और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरी स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए। सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी मैं, और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अग्नि अगली जो है ये रचना है, बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है। जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशोदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने

भवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को

भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ाने, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुँच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश

बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा

0: राज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने

0: को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजिज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलाल आबादी की बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: इनकार का आलम कभी इकरार का आलम
1: प्यार का आलम
0: प्यार का आलम।
2: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज की मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
2: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: हसी कहाँ के,
1: हम चांद आत्मा के,
0: हाय हाय वुरूद इतना,
1: हाँ हाँ वुरूद इतना,
0: चुप ये अदा है ये नशा,
1: हाँ हाँ

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आसमां के,
0: हाय हाय गुरूर इतना,
1: हाँ हाँ गुरूर इतना,
0: उफ ये अदा है ये नया,
1: हाँ,

0: नैया
1: हाय।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुनहली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, तो आपको लगे कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे, वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है, हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुँचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
2: जी,
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल,
1: तो आज अशिक्षित हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं।
1: हाँ,
2: और इस दूध में जो जैसा आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ,
2: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
2: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के सर में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए, यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
2: बिल्कुल, और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता
1: है, हाँ,
2: कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
1: बिल्कुल,
2: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
2: जी,
1: वो।
2: और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं और उनके पास परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो चलिए अब ये सुन लेते हैं।
3: इतने बड़े

0: इतने बड़े जहां मैं तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है,
0: हाँ
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग-अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं

0: है, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा,
1: जी
0: और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे
0: हाँ
1: सोच
0: बिल्कुल
1: जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है, जैसे आपने कहा ना किसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे ना केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं, तो वो
1: जी
0: स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें, और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित कर हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए

0: कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
2: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
3: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
4: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
3: अब हम उसे कटवा लेना।
4: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
2: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
4: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
2: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
3: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
4: जी,
3: ये क्या बात है?
4: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये हो

0: पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
1: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
0: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर हूंगा तो इसे कटने न दूंगा।
1: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
2: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
0: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
1: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
0: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
2: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
1: क्या बात है मनोहर सिंह?
0: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
1: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
2: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
0: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
1: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं, अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
0: ठाकुर साहब इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
1: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
2: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
2: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
4: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
2: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है, इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था, वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
0: तेजा बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे

0: इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये बेचारे हैं क्या चीज?
1: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
2: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
3: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल?
2: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उस का व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय
3: है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
2: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
3: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी,
0: क्या क्या
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी है।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है या व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भी जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आए कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे दुकान पे ले जाएं जहाँ पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौना को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है।

0: है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छूमंतर। और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल। और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक टाइम वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता ये है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहां से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल उसी का वक्त हो रहा है।

0: जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जब बातें कर रहे थे, इसके हमारे श्रोता कहते हैं

0: कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश में पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगे और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है। प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं, एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए। यही बात अभी हम भी कर रहे थे, तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: बड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरन।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
5: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉइड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉइड फोन और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं।

0: ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है,
1: जी
0: तो वो लोग भी अभी इसे चलाना सीख रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं, ये अपने आप ही उस चीज़ का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
0: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
1: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सचर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
0: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची चीज़ यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसे भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं, और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है उसका
1: उसका जो मसाला है
0: वो
1: जी।
0: लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: भाई, हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को भेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई, अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहत नामा।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं, जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद

0: मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है,
1: जी
0: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
1: जी
0: देखूं तो भी काफी है, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात है
0: शुक्रिया एक बार
1: जी
0: और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आपने
0: जी
1: कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं,
0: जी
1: ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
0: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की
1: जी
0: कांच की,
1: जी
0: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला ब्राउन ब्लू जो भी दिखते हैं उसके
1: जी
0: पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है,
1: जी
0: उसके बाद पीछे का पर्दा है
1: जी
0: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस
1: जी
0: है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता
1: जी
0: दिया। अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं,
1: जी
0: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे
1: जी
0: रहा। एक
1: जी
0: सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है।
1: जी
0: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो
1: अच्छा
0: पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है, ओके okay? उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है।
1: जी
0: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके
1: और ये
0: रिजल्ट्स आते
1: सभी
0: हैं,
1: जांच में पता चल जाता है
0: जांच में
1: कि
0: पता
1: हो
0: चल
1: रहा
0: जाए।
1: है।
0: या ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे
1: इसकी क्या वजह हो सकती है?
0: हैं। आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो
1: अच्छा
0: आया है हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग
1: जी
0: जाए किसी को,
1: जी
0: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता, पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है, अगर अब पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा,
1: जी
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो साल 2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक चीज जो होती है, जो यहां पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल लेंस, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
1: अच्छा
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो जिंदगी में या तो फिर बाबा किसी को

0: कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी
0: नाइनटी
1: चलता है
0: नाइन 100% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी
1: जी।
0: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके,
1: जी,
0: शी इज नाइनटी
1: तो
0: वन
1: इतना
0: ईयर्स ऑफ एज,
1: लंबा वो
0: इतना
1: लेंस
0: अरसा
1: चलता
0: हो
1: है।
0: गया, 91 ईयर्स हो गए, उनकी उम्र है उनकी और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है, इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था, ये
1: अच्छा,
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम
1: जी
0: दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन हो, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर, उसको
1: जी
0: तोड़
1: जी
0: के
1: तो उसका
0: निकाल
1: असर
0: के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह है, हम
1: जी
0: सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हो, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल के, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर
1: बिल्कुल
0: मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी,
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको
1: बिल्कुल
0: दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है,
1: जी
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहाँ गिरेगा, आंख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले ही कहा अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सहलेगा,
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है,
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है

0: तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
1: जी बहुत जरूरी है,
0: जी
1: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
0: जी जी
1: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा?
0: जी
1: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना
0: जी
1: आंख
0: जी
1: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है,
0: जी
1: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
0: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
1: जी
0: ये एक छोटा सा कदम
1: जी
0: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
1: सही
0: लोग
1: है,
0: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
1: नहीं बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
0: जी
1: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
0: जी
1: दिक्कत होती है।
0: जी तो
1: उनके
0: इससे
1: लिए
0: बहुत
1: भी
0: लोगों की मदद हो सकती है।
1: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
0: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
1: जी
0: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
1: ये नॉर्मल है, आई
0: जी
1: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
0: जी
1: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं,
0: जी जी
1: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम, प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहाँ पे लगे और कैसे लगे ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजुरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
0: जी
1: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है, तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
0: जी
1: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
0: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
1: बहुत
0: है।
1: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज, ये बॉम्बे में
0: जी
1: तो स्पेशली जो भी लेट से जहां पे ये
0: फैक्ट्रियां हैं।
1: फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके
0: जी
1: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
0: जी
1: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन वो
0: बिल्कुल
1: हमारा सेठ नहीं देता, सेठ नहीं देगा, अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेठ नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
0: खुद
1: ग्लास
0: नहीं
1: यूज
0: कर
1: करो।
0: सकते
1: और एक
0: लोग।
1: और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनता है, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
1: ज्यादातर
0: जी।
1: उसकी आंखों में उड़ता है,
0: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
1: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
0: जी
1: लॉस्ट देयर आइज, तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में

0: अभी तक ये
1: ये
0: कंसेप्ट
1: छोटे
0: बहुत
1: बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
0: आंखों
1: पर?
0: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
0: जी
1: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं, करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
0: खतरनाक
1: जो
0: नहीं है,
1: लोग,
0: फैशन है, उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो।
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: ना
1: हैं?
0: ना ना ना, नो नो नो, नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
1: जी
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए, जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
1: जी
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। आप
1: अच्छा
0: टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का

0: यूज नहीं करता,
1: जी
0: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
0: जी
1: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
0: खतरनाक
1: जो
0: नहीं है,
1: लोग।
0: फैशन है, उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: ना
1: हैं।
0: ना ना ना, नो नो नो, नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
1: जी
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए, जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
1: जी
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब
1: अच्छा
0: टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है,
1: जी जी जी
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है,
1: हाँ
0: कहीं
1: वो
0: गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन में है, उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी
1: जी
0: टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे,
1: जी
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
1: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना
1: बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है, बहुत
1: जी
0: जरूरी है,
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं आंखों
0: जरूर
1: से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात
0: जरूर।
1: करते हैं।

0: टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन आ
1: जी
0: रही है,
1: जी जी
0: आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
1: जी जी
0: ये एनवायरमेंटल हो गया है,
1: हाँ
0: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
1: तब होता है
0: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
1: क्या? ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान? ओहो,
0: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
1: हाँ,
0: मेहरबानी करके बंद कीजिए,
1: ओहो,
0: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है,
1: जी
0: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
1: जी
0: आंख को साफ कर रहा है। तो
1: जी
0: जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
1: जी
0: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
1: हाँ,
0: ठंडा पानी मारेगा,
1: और वो तेज तेज
0: तेज
1: चीपे।
0: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
1: तो
0: है,
1: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
0: किसी भी
1: ऊपर?
0: परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए। तकलीफ हो रही है
1: जी जी जी
0: आंख
1: जी
0: को पानी
1: जी
0: मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
1: जी
0: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
1: जी
0: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
1: जी
0: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
1: दिन में नहीं
0: दिन में
1: निकलती
0: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
1: जी
0: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे, आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
1: हाँ,
0: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी। जितना
1: ओके
0: हो दवाई अवॉइड कीजिए,
1: हाँ
0: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं, आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं, हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों
1: जी,
0: में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
1: तुरंत डॉक्टर के पास
0: तुरंत
1: जाइए।
0: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
1: हाँ
0: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर
1: जी
0: आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे वो बहुत जलता था,
1: जी
0: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे थे
1: हाँ,
0: तभी।
1: लड़कों को
0: हाँ,
1: भी,
0: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और
1: लड़कियों
0: बहुत जलता था, मुझे याद है।
1: को
0: आईलाइनर आ गए हैं जो काफी
1: भी
0: सेफ है लेडीज के
1: जी
0: लिए,
1: जी
0: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
1: यस
0: वहां पे लगा दिए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए,
1: हाँ
0: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए।
1: जी
0: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को।
1: जी
0: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट
0: सबसे
1: है
0: नाजुक चीज है, बहुत
1: जी।
0: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
1: जी
0: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता, वेरी
1: जी
0: सिंपल।
1: जी
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी,
1: और
0: और
1: ये
0: मुझसे
1: हमें
0: कहा
1: पता नहीं
0: गया है
1: था कि ये
0: कि
1: खतरनाक।
0: योग में ये करते हैं। मैं, आई
1: हाँ
0: टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है, आंख
1: जी
0: बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है। आप
1: हाँ,
0: रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है,
1: लेकिन
0: समझे?
1: खुली आंखों के ऊपर
0: खुली
1: छींटे नहीं
0: आंखों
1: मारने।
0: की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं,

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना,
0: जी
1: तो

0: सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं, जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है,
1: जी
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी
1: सही
0: वाली
1: है,
0: रखेंगे,
1: सही है
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना,
1: जी
0: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, आप बर्फ लगाते हैं ना,
1: जी
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं वहां पे, हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया,
1: तो
0: आप
1: कुछ
0: गिर
1: ठंडा
0: गए, तो
1: लगा
0: पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना,
1: जी
0: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हम कम करना चाहते हैं, सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है,
1: जी
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है, इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है,
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी का
0: सेम
1: असर
0: पानी
1: है
0: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट,
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं,
0: जरूर,
1: खामोशी फिल्म का गाना, हमने
0: हाँ,
1: देखी है इन आंखों की
0: अरे
1: महकती
0: वाह
1: खुशबू, गुलजार साहब का गाना
0: जी।
1: है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी
1: टुडे, और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियाँ रहती है, पैदाइशी बीमारियाँ रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था,
0: जी
1: जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती हैं,
0: ओके
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25 दिन तक अंधे भी हो सकते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और
1: हाँ,
0: उसकी बात करनी जरूरी
1: वो
0: है।
1: बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है,
0: जी
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड
0: जी
1: डायबिटीज़
0: जी
1: का।
0: जी जी
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो
0: जी
1: ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज़, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती है, सरल मैं आपको बता देता हूँ। आँखों में डायबिटीज़ में मोतियाजल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा, कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं,
0: जी
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं, जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है, तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सेटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है, ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं, इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना जरूरी है कि आपका

0: शुगर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन
1: जी
0: के दौरान।
1: जी जी
0: अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है। जैसे
1: जी
0: हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया,
1: जी
0: ठीक है। अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है।
1: जी
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी, आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई
1: जी
0: डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है, तो क्या नहीं, नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है,
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वॉज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है,
1: जी
0: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी में हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है,
1: जी
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारण ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में, किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो
1: तो ब्लड
0: लीकेज किस
1: निकल
0: चीज का,
1: आएगा।
0: ब्लड निकल आता है, तो
1: जी
0: ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है, वरना हमको सारी खुश में अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशी आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी, और
1: बिल्कुल
0: ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन, इंजेक्शन, ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है, आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है,
1: जी
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है, तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो, और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर,
1: जी
0: डायबिटीज की दो ही चीजें हैं, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है।
1: जी
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, ये चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है।
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है,
1: जी
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती,
1: जी
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम।
1: जी
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार ये 1 साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं ना।
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है, हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल, और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों

0: को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
1: बहुत
0: कराएं
1: जरूरी है
0: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
1: जी
0: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
1: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है।
1: जी
0: डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी ब्लड प्रेशर है उसमें से एक,
0: हाँ
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है, अगर ब्लड प्रेशर सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है, देखिए आंखों को बहुत ही बचाया गया है, देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं।

0: सकता, तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये
1: जी
0: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो आपको दिखाई
1: तो
0: देंगे,
1: दिखाई
0: सभी में
1: देता है
0: है।
1: जी।
0: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जेली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है, तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम वहां से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है।
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी
0: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी
1: जी
0: स्पॉन्टेनियस हो सकती है
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली,
1: जी जी
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है, वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
0: जान ही
1: शुरू
0: नहीं
1: हो जाता
0: आएगा ना,
1: है।
0: उसमें
1: जी
0: जान निकल
1: जी
0: जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिसपे
0: ये
1: ये सब होता
0: डायबिटिक
1: है?
0: रेटिनोपैथी में होता है, एक
1: जी
0: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो, एक और चीज है बुजुर्गों में जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है,
1: जी
0: उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डीजनरेशन यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके
1: जी
0: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
1: अच्छा
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको ओसीटी कहते हैं, इट्स लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द आई, तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके
0: ये
1: लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है, तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शन ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कई तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हाल चाल बहुत कम होता है, तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में,
1: उसमें हो नहीं
0: देखिए
1: सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आँख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई

0: कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी,
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीजों में, आप भी जानते
1: बिल्कुल
0: हैं, वेदर
1: बिल्कुल
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे ही आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी,
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात
0: आप
1: है,
0: जानते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: वापस जाइए, वापस 8th, 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस
0: वर्चुअल
1: बिल्कुल
0: इमेज है। अरे
1: हाँ,
0: वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब
1: सीधी
0: हम
1: होती
0: एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम उल्टे हैं। अच्छा, वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार?
1: कमाल है
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये कर
1: यहां तक
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: गया
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक, उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: यस डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर
1: सेल्फ
0: डालिए।
1: मेडिकेशन इज
0: सेल्फ
1: डेंजरस।
0: मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ, देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी,
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू, दे आर मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें।
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता,
1: जी,
0: ओके। लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए,
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक, शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखें, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपया करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है, कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें।
1: जी,
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है,
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन
1: नो
0: लाइफ,
1: शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही
0: ये
1: बॉटम
0: बहुत
1: लाइन
0: है।
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप
0: थैंक यू,
1: राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में
0: नहीं
1: आपने बातें की, शुक्रिया।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया, और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, और इस जगह पे बुलाया जहां पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं, तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये, तो
1: जी
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से।

0: यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा। अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी।
2: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खड़गवां, रामेश्वरपुर, पंडो पारा, झींगा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और धामनी में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, परसवार कला, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, करजी, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, सिलाजू, उचेरवा, आनंदपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये अस्कला, दोरना, जरहाडी, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, बिनई, गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल, बगीचा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये कुंजारा, श्री टोली, ढोंगा आंबा, मयूर चूंदी, बिलासपुर, बोडालता, कटंग खार, देवरी, छेरा घोघरा, जुमे केला, झिक्की, खंता डांड, परसा डांड, कुर्डे

0: बिमड़ा, खड़ामाचा, पीठा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल, धरमजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 105 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये बड़गांव, टीमन भैना, सुईयारा, पंडरीपानी, पतरापाली, टेवानारा, गोड़मा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायली खंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गाना, जिसे लिया है हमने फिल्म याराना से। आवाज किशोर कुमार की है, गीतकार हैं अनजान और बंदिश है राजेश रोशन की।

ये गीत आपने सुना फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज़ में। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। ये है फिल्म कलाकार से। एक बार फिर से ये आवाज़ किशोर कुमार की है। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है ये वादा रहा। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

और अब हम सुनते हैं फिल्म रॉकी का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। गीतकार है आनंद बख्शी और बंदिश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

के लिए से। आवाज़ें थी एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 होने वाले हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा जगत।

युवा साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी विलासपुर और मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम युवा जगत में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। साथियों आज युवा जगत में आज की बात में बात करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पे हम उन्हें नमन करते हैं। आज मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हमें बताएंगी गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्रोफेसर गौरी त्रिपाठी। साथ ही साथियों आज क्रम होगा प्रकृति एवं पर्यावरण, जिसमें विषय होगा एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें हम सुनेंगे कोने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण कर रहे विद्यार्थियों के विचार, वो वृक्षारोपण को लेकर के क्या सोचते हैं। साथ ही साथियों साथ होगा आज युवा जगत कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गानों का। तो साथियों आइए सुनते हैं युवा जगत कार्यक्रम में, शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने को और सुनते हैं फिल्म किसी का भाई किसी की जान का यह गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है कमाल खान और पलक मुच्छल ने, बोल हैं शब्बीर अहमद के और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ये प्यारा सा गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया था कमाल खान और पलक मुच्छल ने, बोल थे शब्बीर अहमद के और संगीत से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। साथियों, समय हो गया है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानने का। आइए सुनते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, जिनके बारे में बातचीत हुई है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर गौरी त्रिपाठी से। युवा साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। साथियों, आज उनकी जयंती है, उनके विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर गौरी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका इस क्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: यदि एक युवा को मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में समझना हो तो वह किन प्रकार समझ सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और हिंदी साहित्य में, खास तौर पर आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग और सरस्वती पत्रिका का बहुत योगदान है। जिस आधुनिक चेतना की बुनियाद भारतेंदु युग में पड़ चुकी थी, उसका मुकम्मल विकास द्विवेदी युग में ही संभव

0: हुआ। और जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो अनचाहे ही केंद्र में हमारे सामने सरस्वती पत्रिका की भूमिका निर्धारित होने लगती है। और आधुनिक युग में साहित्य की भाषा के मूलभूत प्रश्न को अगर किसी ने सबसे पहले उठाया था तो वे थे मैथिली शरणगुप्त। हमारे साहित्य की दुनिया में और राष्ट्रवादी कविता की दुनिया में मैथिली शरणगुप्त एक बहुत बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त को 1886 को झांसी के चिरगांव में हुआ था, जो एक छोटा सा कस्बा है। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। और आपने जो सवाल पूछा राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, तो महात्मा गांधी ने ही उनकी कविताओं से प्रभावित होकर के उनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। और इसलिए भी यह दर्जा मिला था कि उन्होंने जो भारत भारती नामक खंडकाव्य लिखा था वह हजारों करोड़ों देशभक्तों के लिए आदर्श की किताब थी। और यह पुस्तक भारत भारती हिंदी खड़ी बोली के सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य में गिनी जाती है। हिंदी साहित्य का जो द्विवेदी युग था उसके अगर किसी एक प्रमुख रचनाकार का हम नाम लें तो वह नाम ही होगा मैथिली शरणगुप्त। सरस्वती पत्रिका के केंद्र में और द्विवेदी युग के केंद्र में मैथिली शरणगुप्त का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और केवल भारत भारती ही कृति नहीं बल्कि उन्होंने अनेक काव्य कृतियां लिखी हैं, जैसे साकेत, पंचवटी, जयद्रथ बध, यशोधरा पर भी उन्होंने तमाम रचनाएं लिख रखी हैं।
1: तो मैम, आपने भी बात किया कि महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता, उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा, और बातचीत अभी हो रही थी उनके एक साहित्य के भारत भारती की, तो ध्यान आता है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको अपने देश से प्यार नहीं, राष्ट्र से प्यार नहीं, क्या ये उसी भारत भारती की कविता की कुछ पंक्तियां हैं?
0: जी बिल्कुल, राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की जो राष्ट्रीय चेतना थी वह आधुनिक हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम अध्याय रही है। कहा जाता है कि आजादी के दौरान एक ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक ऐसी स्त्री थी जिसने भारत भारती को अपने सीने पर बांध करके छलांग लगा दी। कहने का मतलब यह है कि ये कविताएं ओज तो हमारे अंदर जागृत ही करती थी, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे लिए यह प्रयाण गीत की तरह हुआ करती थी। उनकी कविताएं भारत के गौरवशाली अतीत, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामाजिक समरसता और देशभक्ति का संगम रही है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पराधीन भारत में जन जन में नव चेतना और स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की। सरस्वती पत्रिका का प्रसंग बार बार आ जाता है क्योंकि सरस्वती पत्रिका ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे भाषा की सफाई का काम भी उन्होंने किया कि कविता की भाषा जिस पर ब्रज भाषा का दबदबा हुआ करता था, सरस्वती पत्रिका ने ही खड़ी भाषा की तरफ भाषा का रुख मोड़ा। और यह बहुत बेहतर तब तक नहीं हो पाता जब तक मैथिली शरणगुप्त सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य के लिए ना आ पाते। और हम देखते हैं कि उस कालखंड में जब हम आजादी के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे तो देश की दशा को कथानक बना करके गुप्त जी ने 3 सर्गों का काव्य लिखा भारत भारती। ये सर्ग थे इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य। उसकी एक महत्वपूर्ण कविता जिसका उल्लेख अभी आपने किया कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उनका मानना है कि जब तक हम अतीत के पास नहीं जाएंगे तब तक हम वर्तमान की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे साथियों कि वे अतीत के पास शरण लेने के लिए नहीं जाते हैं बल्कि शक्ति अर्जित करने के लिए जाते हैं। जैसे जब हमें कोई लंबी छलांग लगानी पड़ती है तो हम धीरे से थोड़ा 2-4 कदम पीछे जाते हैं, तो अतीत वर्तमान उनके लिए एक कह सकते हैं कि समग्रता का सूचक था, शक्ति का सूचक था। और राष्ट्रवादी कविता की परंपरा जो मैथिली शरणगुप्त ने शुरू की वो हमें लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान से होते हुए अभी तक निरंतर चली आ रही है।
1: तो आपने बहुत अच्छे से मैम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में और उनके साहित्य के बारे में और उनके साहित्य ने किस प्रकार से आजादी में योगदान दिया देश को स्वतंत्र कराने में, और कैसे उनके साहित्य जो थे हमारे देश के जो स्वतंत्रता के नायक रहे उन लोगों के मजबूती का आधार बना। मैम, हम लोग बात कर रहे हैं आज मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पे, तो मुख्य रूप से ऐसा उनका कौन सा ग्रंथ है, उनकी कौन सी ऐसी लिखी हुई रचना है जो आपको विशेषकर अच्छी लगती है?
0: जी बिल्कुल, हिंदी की अध्यापक और विद्यार्थी होने के नाते भारत भारती मेरी प्रिय रचना है क्योंकि इसी कृति को पढ़ करके, देख करके देश प्रेम का बहुत संचार होता है। और यूं कहें कि उस जमाने में भी और इस जमाने में भी तमाम लोगों ने कविता करनी सीखी कि कविता खड़ी बोली में कैसे की जाती है। मुझे भारत भारती के अलावा साकेत इनका महाकाव्य जिसे प्रबंध काव्य भी कहा जाता है वह बहुत ज्यादा पसंद है।

0: हालांकि इसका नाम साकेत रखा गया है अयोध्या के ऊपर, लेकिन इसकी जो केंद्रीय पात्र है वह उर्मिला। तो उर्मिला के ऊपर जो यह उन्होंने अपनी काव्य धारा लिखी हुई है, उसके मूल में यही बात है कि कैसे उस जमाने में जो उपेक्षित चरित्र थे, जो हाशिए के चित्र थे, उनको मुख्य धारा में ला करके उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, और उर्मिला के माध्यम से वे सामाजिक चेतना का संचार करते हैं। इसके अलावा मुझे पंचवटी भी बहुत पसंद है। पंचवटी का जो प्रकृति वर्णन है वो मुझे बहुत आकर्षित करता है, और मैं मानती हूँ कि छायावादी कालखंड की रचना जो प्रकृति के मानवीकरण के लिए बहुत आदर्श मानी जाती है, उसकी शुरुआत मैथिली शरणगुप्त अपनी कविताओं में करते हैं। वो कविता आप सबने सुनी होगी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी का यह वर्णन मैं समझती हूँ कि आधुनिक काल में द्विवेदी युग की रचनाओं के केंद्र में सबसे बेहतर बन पड़ा है। पंचवटी के अलावा यशोधरा, जयद्रथ वध, और दोबारा फिर मैं साकेत का नाम लेना चाहती हूँ, यशोधरा और उर्मिला का चरित्र चित्रण करने के पीछे अगर हम देखें तो स्त्री चेतना, जो स्त्रियों के दुख दर्द को लेकर के भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, उसके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना लगती है। साकेत का नवम सर्ग मुझे बहुत पसंद है, जो प्रेम की चेतना को लेकर के प्रकट करता है, और उर्मिला पहली बार खुद से अपना साक्षात्कार करती हूँ। उन्हें लगता है कि नहीं, एक स्त्री के जीवन में खुद अपने अस्तित्व का होना भी कितना जरूरी है, और एक बहुत विशुद्ध प्रेम गीत है नवम सर्ग में जो प्रेम की चेतना को प्रकट करता है। वह गीत है, दोनों ओर प्रेम पलता है, हास्य की पतंग भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है।
1: तो मैम आपने बहुत अच्छे से इसको कहा, और जैसा कि आपने भी कहा कि मैं हिंदी के अध्यापक होने के साथ साथ हिंदी के विद्यार्थी भी हूँ, क्योंकि सीखने का क्रम कभी छूटना नहीं चाहिए और वो लगातार जीवन में चलते रहना चाहिए। आप लगातार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया यह युवा जगत युवाओं का कार्यक्रम है, तो उनकी जयंती पे आपने तो यह बता दिया कि आपको कौन कौन से उनके साहित्य, उनके रचनाएं, उनके ग्रंथ अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई एक साहित्य या उनका ऐसा कोई एक रचना जो युवाओं को पढ़ना चाहिए, आप कौन सा बताएंगे?
0: बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि विद्यार्थियों को या एक सामान्य नागरिक को अपने देश के साहित्य संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कविताओं में पढ़ें तो मैं समझती हूँ कि मैथिली शरणगुप्त के समग्र साहित्य को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर भारत भारती। भारत भारती पढ़ने के दौरान हमें अपने भारतवासी होने का गौरव बोध होता है, एक नागरिक होने का गौरव बोध होता है, और इसके अतिरिक्त अगर समय मिले या साहित्य प्रेम की इच्छा जगे तो साकेत का भी अध्ययन किया जा सकता है। मैं मानती हूँ ये दोनों कृतियाँ आपको एक बेहतर नागरिक बनाने में, साहित्य प्रेमी बनाने में बहुत मददगार हो सकती
1: जी।
0: हैं।
1: तो आपने साकेत और भारत भारती का जिक्र किया, यदि कोई आकाशवाणी के श्रोता इसको सुन करके उनकी इच्छा हो पढ़ने की, तो यह उन्हें कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है वह भी थोड़ा बता दें।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसे तो सामान्यतः आप किसी भी पुस्तक की दुकान से भारत भारती ले सकते हैं, लेकिन आज चूंकि तकनीक की दुनिया है तो आप hindisamay.com, हिंदवी पर या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आप ये कविताएं पढ़ सकते हैं, और मैं मानती हूँ कि अगर आपकी पढ़ने की ख्वाहिश है तो आप कहीं से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, और यह बहुत सामान्य और बहुत महत्वपूर्ण कृति है। सामान्यतः हिंदी के पाठ्यक्रमों में यह कविता चलती है, तो इसे खोज करके इंटरनेट पर और पुस्तकों के द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने, जहाँ चाह वहाँ राह, व्यक्ति जो चाह लेता है वह कर सकता है। तो अब समय हो गया है मैम आपसे विदा लेने का, आपने बहुत अच्छे से कम समय में युवा साथियों को, आकाशवाणी के श्रोताओं को मैथिली शरण गुप्त जी के जयंती के अवसर उनके जीवन से जुड़ी हुई और उनकी रचनाओं से जुड़ी हुई सब जानकारियां दी। अब जाते जाते आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप बेहतर साहित्य पढ़ें, बेहतर रचनाओं को पढ़ें, और न केवल पढ़ें बल्कि मैथिली शरणगुप्त को पढ़ करके, उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखनी पढ़नी सीखी। तो अगर आप भी साहित्य की दुनिया में आते हैं, अपनी लेखनी उठाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप सामाजिक चेतना के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर कुछ अच्छा लेखन कर सकें, कुछ अच्छा पढ़ सकें, तो शायद एक नागरिक होने के कारण आप अपने देश के लिए एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, और प्रोफेसर गौरी त्रिपाठी मैम ने आप सभी आकाशवाणी के श्रोताओं से आग्रह किया है पढ़ने का, क्योंकि कहा भी जाता है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों अभी आप सुन रहे थे

0: राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, जिनके बारे में बता रहे थे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर गौरी त्रिपाठी। साथियों, अभी आपसे और भी बातचीत होंगी, पर उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: साथियों, समय हो गया है आज के क्रम प्रकृति एवं पर्यावरण को सुनने का। आइए सुनते हैं आज का क्रम प्रकृति एवं पर्यावरण, जिसमें विषय है एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें बातचीत हुई है कोने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सुधांशु यादव, शुभम और अंशु से। आइए सुनते हैं।
3: युवा साथियों नमस्कार। साथियों, आज क्रम है प्रकृति एवं पर्यावरण। साथियों, यह वह क्रम है जिसका आप पूरे महीने बेसब्री से इंतजार करते हैं, और यह क्रम ऐसा क्रम है जिसमें प्रकृति एवं पर्यावरण से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं और उस बातचीत का अंश आपको सुनने के लिए मिलता है। साथियों, प्रकृति एवं पर्यावरण में हमारा आज का विषय है एक पेड़ माँ के नाम। मानसून का समय चल रहा है, पूरे बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा हो रही है, और चलते चलते हम आ गए हैं कोने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। यहाँ पर कई युवा हैं जो पेड़ लगा रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है?
4: जी, मेरा नाम सुधांशु यादव है।
3: सुधांशु, आप क्या पढ़ाई करते हैं?
4: मेरा M.Com की पढ़ाई चल रही है।
3: M.Com कर रहे हैं आप? वाह, तो बताइए, आप जो यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं, अब तक आपने कितने पेड़ लगा लिए यहाँ?
4: अब तक हमने 30 से ज्यादा पेड़ लगा चुके।
3: वाह, 30 से ज्यादा पेड़ आपने लगा लिए, और उसमें कौन कौन से पेड़ मुख्यतः थे?
4: हम लोग तो मुख्यतः आम और इमली और आंवला नीम अमरूद।
3: अरे वाह, तो आपने आंवला नीम अमरूद इमली आम इन सब पेड़ों को लगाया है। अब आप हमारे युवा साथियों को, चूंकि हम आकाशवाणी से आए हुए हैं और यह कार्यक्रम युवा जगत युवाओं के लिए विशेष रूप से है, तो हमारे जो आकाशवाणी के श्रोता हैं, युवा हैं, उनको आप बता सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है वह कैसे शुरू हुआ?
4: जी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुरुआत 5 जून 2024 को हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी।
3: और इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई?
4: हम अपने जबान से कहना चाहेंगे तो ये बताना चाहेंगे कि अपने माँ के प्रति सम्मान, उनके प्रति एक पेड़ लगाना हमारा अपने माँ को सम्मान देने का अवसर प्राप्त होता है। यह सोच के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण को सोचते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की।
3: पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए और वृक्षारोपण को और अधिक बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लाया। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि सुधांशु जी ने बताया कि वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम, तो आप अपने माँ के नाम उनके सम्मान में एक पेड़ लगा सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से भी एक पेड़ लगा सकते हैं, और आप भारत माता के भी नाम से एक पेड़ लगा सकते हैं। तो आइए साथियों, और लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए, आपका क्या नाम है?
5: शुभम यादव।
3: अरे वाह, आपका नाम शुभम है और मेरा भी नाम शुभम है। तो बताइए साथी शुभम, आप कौन सा वृक्ष लगाए हैं यहाँ?
5: मैं यहाँ बरगद का वृक्ष लगाया हूँ।
3: अरे वाह, बरगद आपने लगाया है, तो ये बताइए कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है?
5: वृक्षारोपण जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। मतलब ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और वर्षा करने में हमको सहायता करते हैं।
3: अरे वाह, ये तो सब नॉर्मल चीज है जिसको लगभग लोग जान रहे हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण क्यों जरूरी है? आप पढ़ाई कर रहे हैं, MSc के विद्यार्थी हैं आप, तो आप क्या बताएंगे?
5: जैसे वृक्षारोपण इसलिए जरूरी है क्योंकि मिट्टी का कटाव रोकते हैं
3: जी,
5: और फल लकड़ी छाया इत्यादि ये हमें प्रदान करते हैं, और प्रदूषण भी कम करते हैं
3: जी।
5: ये सब फायदे हैं वृक्षारोपण के।
3: अरे वाह, वृक्षारोपण के फायदे हैं साथियों, और सबसे जरूरी चीज जो शुभम जी ने बताया, प्राणवायु जो जीवन का आधार है वो हमें वृक्ष से मिलता है। और यदि आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे शुभम?
5: और वृक्ष लगाते जाइए, आप भी पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।
3: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए साथियों, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताइए आपका क्या।

0: अंशु यादव नाम है मेरा।
1: अंशु यादव नाम है। अंशु आप कहाँ से हैं?
0: मैं खुटाघाट रतनपुर से।
1: अरे वाह, रतनपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ क्या पढ़ाई करते हैं?
0: मैं बीएससी का पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अरे वाह, तो बताइए यदि आप खुटाघाट जाते हैं तो खुटाघाट का सबसे अच्छा चीज आपको क्या लगता है?
0: वहाँ का वातावरण मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
1: और वातावरण सबसे अच्छा वहाँ क्यों है?
0: वहाँ पेड़ वेड़ है, पानी है, मस्त ठंडा रहता है मौसम वहाँ।
1: जी
0: लोग इधर उधर घूमने आते रहते, पिकनिक स्पॉट टाइप है थोड़ा,
1: जी,
0: देख के बड़ा मजा आता है।
1: तो पेड़ है, पानी है, प्रकृति से भरा पूरा
0: हाँ।
1: जो जगह है वो खूंटाघाट है। इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष लगाना चाहिए, और इसीलिए आप वृक्ष लगा रहे हैं।
0: हाँ, वृक्ष लगा रहा।
1: चलिए अच्छी बात है। तो हम आकाशवाणी से आए हुए हैं, आप आकाशवाणी सुनते हैं?
0: हाँ सुनते हैं।
1: चलिए अच्छी बात है। तो आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं?
0: बारिश का मौसम है तो मेरे को याद आ रहा है ख्वाब गर्लफ्रेंड का गाना है, तो ये
1: जी
0: मौसम की बारिश वही सुना दीजिए। मैं
1: बिल्कुल, हम आपको जरूर सुनाएंगे। तो आइए साथियों सुनते हैं इनकी फरमाइश पर हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का ये गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है एस किंग और सासा तिरुपति ने। बोल हैं अराफात महमूद तनिष्क बागची के, संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने।

तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे आज का क्रम प्रकृति एवं पर्यावरण। साथियों, आज जो दिन है वह दिन है सोमवार। आज भगवान शंकर को समर्पित जो पूरा महीना सावन है उसका प्रथम सोमवार है। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि समय हमें इतनी कहीं इजाजत देती है। आपको आज का कार्यक्रम युवा जगत कैसा लगा, पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं। और अब अपने साथी शुभम पाठक को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा जगत FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब हम आपको जानकारी देंगे आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ईमेल करें, गीत सुनें। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:20 पर, और इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। रात 8 बजे संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से, और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:30 पर, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा खरीफ फसल में निंदाई गुड़ाई और उर्वरक प्रबंधन। इसके बाद खरीफ फसलों में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर डॉक्टर एसपी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा द्वारा जानकारी दी जाएगी। भेंट करता होंगे महंगू भैया।

8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये थे आज के कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। कल सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कल सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में भिंडी की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाचन स्वर होगा नंद कुमार यादव का। आज सुबह का प्रसारण होगा कल सुबह 7:05 पर।

कल सुबह 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे।

विविध भारती के कार्यक्रम। कल शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण होगा। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत धारा, जिसके अंतर्गत पंचकर्म चिकित्सा विषय पर डॉक्टर विवेक दुबे से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत सामयिक चर्चा का विषय होगा ममता की अमृत धारा। साथ ही क्रम पर्यावरण अभ्यक्ति में आप सुनेंगे अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़ विषय पर चर्चा, प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। और अब इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:10 होने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों बाद हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी में समाचार का अनुप्रसारण करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश के 160 जनजाति गांव ला चुने के लिए है फैसला। आर्थिक अनियमितता के मामला में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुल सचिव ला पुलिस करे है गिरफ्तार। अवास सावन सम्मार के मौका में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के शिव मंदिर में करे गए है विशेष श्रृंगार। भक्त मन के उमड़े है भीड़। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश के 160 जनजाति गांव ला चुने के फैसला ले है। ये गांव में सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण संवर्धन और प्रबंधन पर विशेष योजना लागू करे जाहे। आदिम जाति विभाग है ये संबंध में सब जिला कलेक्टर मल्ला निर्देश जारी कर दे है। अभियान में चुने गए हरेक ग्राम सभा ला योजना ला बने ढंग ले चलाए बर 15 लाख रूपया के मंजूरी दे जाहे। संगे संग चुने गए गांव में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति बनाई जाही जो उन ग्राम सभा ले योजना चलाही। एकर बर ग्राम सभा के नाव ले राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग ले खाता खोले जाही। राज्य सरकार है प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करे के जरूरत और ओखर रूपरेखा में सुझाव दे खातिर समिति बनाई है। ये समिति राज्य के रहवैया मन के व्यक्तिगत सिविल मामला ले जुड़े मौजूदा कानून और व्यवस्था के समीक्षा करही। इच्छुक नागरिक और संगठन अपन सुझाव 30 सितंबर तक ईमेल UCC छत्तीसगढ़@cg.gov.in या फिर डाक ले समिति ला भेज सकत हैं। राज्य सरकार है गौधाम योजना के दायरा बढ़ा दे है। पशुधन विकास विभाग है नियम में फेर बदल करत गौधाम चलाए बर ग्राम पंचायत ला प्राथमिकता दे और शहरी गौठान ला योजना में शामिल करे के फैसला ले है। योजना में गौधाम के संचालन स्वयं सेवी संस्था पंजीयन हुए गौशाला ट्रस्ट और ग्राम पंचायत ले करे चाहिए। योजना के उद्देश्य निराश्रित गौवंश ला सुरक्षित करना और बने देखभाल करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में प्रोजेक्ट सहारा दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम में संग्रीन। समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन कोती ले राखे गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री है दिव्यांगजन मल्ला 3,58,00,000 रूपया ले ज्यादा के सहायक उपकरण बांटिन है। ये बेरमा मुख्यमंत्री है कहिन की ये पहल सिर्फ सहायक उपकरण दे तक सीमित नो है भलुक दिव्यांगजन मल्ला सम्मान आत्मविश्वास और बने जीवन दे के प्रयास है। उमन बतेन की ये अभियान ले अभी तक 1,700 ले ज्यादा दिव्यांग जन मल्ला फायदा मिले है। मुख्यमंत्री है सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर 7 करोड़ रुपया दे के घलो घोषणा करीन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में राखे

कार्यक्रम में नीट परीक्षा में सफल प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी मनसंग गोट बात करी। ये मौका में मुख्यमंत्री हकीहीन की पूरा छत्तीसगढ़ पर ये गर्व के विषय हर है कि प्रदेश में चलाए जा प्रयास आवासीय विद्यालय के पढ़ैया लेका मन है नीट जैसन कठिन परीक्षा में सफलता पाए हैं। खबर के मुताबिक प्रदेश में 17 टीम प्रयास आवासीय विद्यालय चलाए जाते। राज्य सरकार है एनालॉग पनीर और आने डेयरी उत्पाद बनाए भंडारण परिवहन वितरण और बिक्री में तत्काल प्रभाव ले प्रतिबंध लगा दे है। ये संबंध में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना जारी करे है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक जांच में पाए गए कुछ एक उत्पाद दूध से बने नहीं होए के बाद ओला पनीर और डेयरी उत्पाद के रूप में बेचे जात रही। प्रतिबंध वो उत्पाद में लागू हुई जौन में दूध के जगह वनस्पति वसा वनस्पति तेल और आने गैर दुग्ध सामग्री बउरे गए है और जिला असली डेयरी उत्पाद असन बताए जाते। ये प्रतिबंध बच्छर भर भर तक प्रभावी रही। खाद्य विभाग कहे है कि प्रतिबंधित उत्पाद ला बनाए या बेचे जाए में नियमानुसार कार्रवाई करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था और अब आगु बढ़बो बाचे समाचार को थी। हाले में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में माइलोगिन मन के 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीत के छत्तीसगढ़ के नाव रोशन करैया ज्ञानेश्वरी यादव आज रायपुर पहुंची। उमन मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले सौजन्य भेंट करी। मुख्यमंत्री है ज्ञानेश्वरी यादव के स्वागत और अभिनंदन करत घोषणा करी की ज्ञानेश्वरी ला राष्ट्रमंडल खेल में उखर उत्कृष्ट प्रदर्शन खातिर राज्य सरकार डहर ले 30 लाख रूपया के प्रोत्साहन रकम दे जाही। संगे संग उला आउट ऑफ टर्न डीएसपी पदमा पदोन्नति घलो दे जाही। खबर के मुताबिक ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के रहवैया हवाए। दुर्ग जिला के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के एक दैनिक भोगी महिला कर्मचारी के वेतन में गबन के मामला में विश्वविद्यालय के कुल सचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप ला पुलिस गिरफ्तार करे है। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चली कि फरवरी 2025 ले जुलाई 2026 के बीच दबाव बना के महिला कर्मचारी के बैंक खाता में अवैया वेतन में 1,49,000 रूपया ले ज्यादा की रकम ऑनलाइन ले दिगर खाता में भेजेगी। विश्वविद्यालय के जाँच समिति के रिपोर्ट बैंक रिकॉर्ड और आने साक्ष्य के आधार में पद के दुरुपयोग और अमानत में खयानत के पुष्टि होए के बाद पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार करे है। मामला के जांच चलत है। दुर्ग जिला में काली रथिया कुंड धमधा रोड में लूट के वारदात ला अंजाम देवर पहुंचे चार झन बदमाश मन विरोध करैया गांव तुमा कला के उप सरपंच प्रकाश सिंह कश्यप के धारदार हथियार ले हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मनु खरतीर के मोबाइल फोन और करीबन 4,000 रूपया नकदी लूट के फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में करही डीले चिखली चौक के बीच हुई से। जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी समित मिश्रा बताइन की शुरुआती जाँच मामला लूट के दौरान हत्या के लागा थे। आरोपी मन के पहचान बार तीर तखार में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगाली जाते। भिलाई नगर निगम के महिला पार्षद रीता सिंह उखर पति रमेश चंद सिंह राजपूत और पुत्र मानव चंद सिंह के खिलाफ करोड़ों रुपया के भूइया और खनन संपत्ति सौदा में कथित धोखाधड़ी के मामला दर्ज करे गए है। न्यायालय के आदेश के बाद उतई थाना पुलिस भारतीय न्याय संहिता के आने आने धारा में अपराध दर्ज करके मामला के जाँच शुरू कर दे है। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय ईडी 12 करोड़ 78 लाख रुपया के 62 टीम चल अचल संपत्ति अस्थायी रूप ले कुर्क करे है। ये संपत्ति में करीबन 4 करोड़ 69 लाख रुपया के शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल है। खबर के मुताबिक रायपुर विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूइया अधिग्रहण में हुए फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामला में ईडी ये कार्रवाई करे है। आज सावन के पहली सोमवार है। ये मौका मा राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के शिव मंदिर मा भक्त मन के भीड़ उमड़े है। श्रद्धालु भिनसर चले भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करके पूजा पाठ करत है। रायपुर मा कांवड़िया मन हा महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मा जल चढ़ाई है। उन्हें बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर और आने शिव मंदिर मन मा सुघर सजावट करे गए है। भक्त मन के कतार सबो मंदिर मा देखे जा सकते है जी हाँ लोगन मानता माना
रहा थे। काली इतवार के अमरकंटक ले निकले कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त पवित्र जल लेके भगवान भोलेनाथ के अभिषेक खातिर बोहरम देव पहुंची। उप

मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पहल में अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ यात्री मन भर मुफत में भोजन प्रसादी और जरूरी सुविधा के विशेष व्यवस्था करी गई रही। भारतीय जनता पार्टी रहले संत शिरोमणि रविदास जी के 650वां जयंती के मौका में आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत वाराणसी ले लाए गए पवित्र माटी और जल युक्त कलश के वितरण के कार्यक्रम काली 4 अगस्त के रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित करे जाही। ये मौका में मुख्यमंत्री

वितरण के कार्यक्रम काली 4 अगस्त के रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित करे जाही। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संगे संग कतकोन साधु संत और आने आने समाज के प्रमुख मौजूद रही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राज्य सरकार है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रदेश के 160 जनजाति गांव ला चुने के लिए है फैसला। आर्थिक अनियमितता के मामला में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुल सचिव ला पुलिस करे है गिरफ्तार। और आज सावन सोमवार के मौका में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के शिव मंदिर में करे गए है विशेष श्रृंगार। भक्त मन के उमड़े है भीड़। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में। पहला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता मिगलानी और सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित तानिया नारंग, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीमुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा वर्दशिंगी, महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज नारायण यदु और भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश संध्या, कीर्ति डिकेश, वासु डॉली, पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला और विशाल, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची।

और प्रवीण पुजारी, आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर सुनवाते हैं आपको आशिकी फिल्म का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में। समीर ने इसे लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ईमेल करें गीत सुने में। अगला गीत है फिल्म दिल से। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजें हैं। समीर ने इसे लिखा है और संगीत है अन मिलिन का। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, वीरमगम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खीकराम दिवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका दिवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सोंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, पोड़ी भाटा अखलतरा से दिलीप चंदन, चोआराम यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा और प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व, हिमाक्ष, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, करण, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, तिवर्ता, डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरिजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य, मेघा मस्कीन, देगलूर जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलत फरहद, रिफत, नुजहत साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी,

हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, गाँव नाथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए, सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है दिल।

कार्यक्रम का अब जो गीत है वो है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, आवाज़ें साधना सरगम और उदित नारायण की। मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार हैं और संगीतकार हैं जतिन ललित। इस गीत को सुनना चाहा है और ईमेल किया है तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला, मालौत पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरभ, शाइना मेंडी शर्मा, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार, साथ ही नरगिस खातुन। गुमला झारखंड से नजमुल होदा एसएम, जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानुप्रिया और माधुरी किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाड़कर, टुकटुक गवहाड़कर, प्रिंस एकांश, सुमित और ध्वनि गवहाड़कर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, तिलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा सुजाता, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम पडोटी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पडोटी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ईमेल पर लीजिए, सुनिए ये गीत।

इस गीत के साथ ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मों गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 हुए हैं। अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे।

0: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
14: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर,

0: अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 जनजाति गांवों का चयन करने का निर्णय लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव आज रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री ने उन्हें 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देने की घोषणा की। दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव को आर्थिक अनियमितता के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सावन के पहले सोमवार पर आज शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 जनजाति गांवों का चयन करने का निर्णय लिया है। इन गांवों में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। आदिम जाति विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत चयनित प्रत्येक ग्राम सभा को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही हर चयनित गांव में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो ग्राम सभा के माध्यम से योजना का संचालन करेगी। इसके लिए ग्राम सभा के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग खाता भी खोला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 की परीक्षा में कई बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। यह परीक्षा एक ही पाली में होगी। उम्मीदवार परीक्षा का सेंटर नजदीक के 3 राज्यों में चुन सकेंगे। पहला विकल्प उनका राज्य होगा। इसमें राज्य के ही दूसरे शहर का भी ऑप्शन मिल सकता है। परीक्षा से 3 हफ्ते पहले सेंटर घोषित होंगे, ताकि परीक्षार्थी अपने आने जाने और ठहरने की व्यवस्था कर सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में प्रोजेक्ट सहारा दिव्यांग जन उपकरण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों को 3,58,00,000 रुपए से अधिक के सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल सहायक उपकरण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन का संबल प्रदान करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से अब तक 1,700 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो चुके हैं।
2: समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट सहारा के तहत हमारे जो दिव्यांगजन हैं, उनको विभिन्न तरह के संयंत्र वितरण का एक कार्यक्रम रखा गया था। इनके वितरण से निश्चित रूप से उनके जीवन में एक सुविधा होगी, उनको चलने फिरने में, उनको सुनने में हर तरह से सुविधा होगी।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने गौधाम योजना का दायरा बढ़ा दिया है। पशुधन विकास विभाग ने नियमों में संशोधन कर गौधाम संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने तथा शहरी गौठानों को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत गौधामों का संचालन अब स्वयंसेवी संस्थाओं, पंजीकृत गौशालाओं, ट्रस्ट और ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। गौधाम की स्थापना के लिए जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद अन्य निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की आवश्यकता और इसकी रूपरेखा पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य के निवासियों के व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। इच्छुक नागरिक और संगठन अपने सुझाव 30 सितंबर तक ईमेल ucc.chhattisgarh@cg.gov.in अथवा डाक के माध्यम से समिति को भेज सकते हैं। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली ज्ञानेश्वरी यादव आज रायपुर पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी यादव का स्वागत और अभिनंदन करते हुए घोषणा की कि ज्ञानेश्वरी को राष्ट्रमंडल खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार द्वारा 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उन्हें आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति भी दी जाएगी। गौरतलब है कि ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली है। दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की एक दैनिक वेतनभोगी महिला

कर्मचारी के वेतन में गबन के मामले में विश्वविद्यालय के कुल सचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि फरवरी 2025 से जुलाई 2026 के बीच दबाव बनाकर महिला कर्मचारी के बैंक खाते में आने वाले वेतन में से 1,49,000 रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन माध्यम से दूसरे खाते में ट्रांसफर कराई गई। विश्वविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पद के दुरुपयोग और अमानत में खयानत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित निवास से धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के लिए निशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। वहीं विधायक अनुज शर्मा ने बताया कि जिला खनिज न्यास निधि DMF से लगभग 19,65,000 रुपए की लागत से यह अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरसीवा को सौंपा गया है और यह सेवा 2400 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के तहत वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जलयुक्त कलश के वितरण का कार्यक्रम कल 4 अगस्त को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही अनेक साधु संत और विभिन्न समाजों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। दुर्ग जिले में कल देर रात धमधा रोड पर लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे 4 बदमाशों ने विरोध करने पर ग्राम तुमा कला के उपसरपंच प्रकाश सिंह कश्यप की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी, उनका मोबाइल फोन और करीब 4,000 रुपये नकद लूट कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार घटना जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में करही डी से चिखली चौक के बीच हुई। जेवरा सिरसा चौक की प्रभारी समित मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला लूट के दौरान हत्या का प्रतीत हो रहा है। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। भिलाई नगर निगम की महिला पार्षद रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद सिंह राजपूत और पुत्र मानव चंद सिंह के खिलाफ करोड़ों रुपए की भूमि और खनन संपत्ति सौदे में कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद उतई थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 12 करोड़ 78 लाख रुपए की 62 चल अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों में लगभग 4 करोड़ 69 लाख रुपए के शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल है। गौरतलब है कि रायपुर विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण में हुए फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। आज सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। रायपुर में कांवड़ियों ने महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव में जल चढ़ाया। वहीं बुढ़ेश्वर महादेव सहित अन्य शिव मंदिरों में भी आज सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। अमरकंटक से निकली कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त पवित्र जल लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भोरमदेव पहुंच रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बलरामपुर जिले में मूसलाधार बारिश होने से गेउर नदी उफान पर है। इस कारण इस मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर चौरा में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय सरस मेले का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुभारंभ किया। जगदलपुर में आज मुस्कुराता बस्तर के नाम से कार्टून कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बस्तर जिले के 120 विद्यार्थियों ने भाग लिया और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने पुलिस विभाग के अंतर्गत सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर परीक्षा 2024 के संशोधित अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। संशोधित मॉडल उत्तर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर अपलोड कर दिए। मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत
प्रदेश के 160 जनजाति गांवों का चयन करने का निर्णय लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले ज्ञानेश्वरी यादव आज रायपुर पहुंची।

मुख्यमंत्री ने उन्हें 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देने की घोषणा की। दुर्ग जिले के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव को आर्थिक अनियमितता के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सावन के पहले सोमवार पर आज शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। अब सुनते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में है। फिल्म का नाम डर। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है शिव हरि का। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी भिलाई नगर से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी लालिमा, खुशांत साहू और निशांत साहू पलारी से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग पूनाराम और कृष्णा दिवांगन लुतरा खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श, आतिका डांडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अल कबीर सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद बागबहरा भदरती से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन दिल्ली से अस्मा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन और माही सेन बरकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा और हनुमान बोडखे पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांती, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी पूना जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम।

आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। और अब जो गीत सुनने के लिए हमारे श्रोताओं ने ईमेल किया है वो है SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म साजन से। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का। और जिन्होंने ईमेल किया है उन श्रोताओं के नाम हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, बरेली कैंट, चनहेती, उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन, पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, खोंदला, उदयपुर, सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा, भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुद्दीन, जिशान शाहनवाज, अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, नीरज और शुभम, सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार सुरलकर, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान आमना, नसरीन भगवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु, दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह, डुमराव से वली उल्ला अंसारी, सोनम और असमा वली। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए सुनिए ये गीत।

और अब कार्यक्रम का ये गीत फिल्म कयामत से कयामत तक से आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और बंदिश है आनंद मिलिंद की। सुनने के लिए हमें ईमेल किया है महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश, प्रज्ञेश प्रितेश, यवतमाल से राहुल मनवर सरला विशाल चेतन रोशनी और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना शैलेश प्रतीक्षा स्वप्नील रक्षता, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े वसंतराव भोजने निवृत्ति आडोकार, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन शाह मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष विनीता विनीत क्रिस्टी पटवा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश, पैठण से सुरेश जाधव अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल सिया जाधव, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित कुमार हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गोंड मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता, पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक, लसूडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब राम टेके यशोधरा श्राव्या, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू राजबत्ती काजल पूर्वी हेजल राजेश रेशमा साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन अब्दुल सलाम राइन, लच्छनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू, नागर कोहरा जिला राजनगांव से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा और श्रीरामपुर से अशोक दले सविता।

अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम सना और अदीबा, मालौत से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू गुड्डू जाजोरिया, दुर्ग से कांबड़े सी आर, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गाना। फिल्म का नाम है वापस।

और अब फिल्म वापस से ये गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और बंदिश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन श्रोताओं ने, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सरवद और सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर दिवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री दिवांगन, ऋषभ और ऋचा दिवांगन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, ऊषा और ऋषभ सिंह, गांधी

ये गीत आप सभी श्रोताओं ने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था वापस। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.5

102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनिए आज जम्मू संगवारी मल्ला महंगू भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो चाहे कोनो भी फसल हो है, फसल में निदाई गुड़ाई और उर्वरक प्रबंधन अच्छा उपज बर बहुत महत्वपूर्ण होते। निदाई गुड़ाई के जहाँ तक बात करबो ता बुआई के 20 ले 25 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई करें, आवश्यकता हुई मां 40 ले 45 दिन बाद फिर दूसर निदाई गुड़ाई ला करे जा सकत हवे। विशेषज्ञ वैज्ञानिक और किसान के मानना हवे कि रोग बीमारी कीट व्याधि ले ज्यादा नुकसान अगर करते तो वो खरपतवार निदाहर करते, फसल ला ज्यादा नुकसान पहुंचाते। समय में अगर निंदा नियंत्रण नहीं करे गईस तो 40 ले 45% का 50% तक के प्रतिशत तक के उत्पादन में फर्क पड़ते, उत्पादन हर कम होते है यानी फसल नुकसान हो जाते है। उनचे दूसर खरपतवार ला समय में हटाए ले पोषक तत्व पानी और प्रकाश के जो नुकसान नहीं हुआ ओला पौधा पाथे। गुड़ाई कर ले माटी भुरभुरा हो जाते, जड़ कहे जाए जड़ के विकास होते है अच्छा ढंग ले होते और नमी हर संरक्षित रहे रहते। ये तो हुई इस निदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण के बाद। आगू अगर बात करबो तो खातू माटी के उर्वरक के तो ये संदेशा ला पहले सुन लेथन फिर एकर गोट बात ला तो कर बिच करबो।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अभी सुनें संदेशा, एकर पहली गोट बात कर रहे हैं कि फसल में खरपतवार के नियंत्रण के उपाय, और अब गोट बात कर वो खातू माटी उर्वरक के। बुवाई ले पहले माटी परीक्षण कराना बड़ जरूरी है, ये ओकर आधार में ही उर्वरक के उपयोग ला करना उचित हो ही। अच्छा तरह ले सड़े गोबर ला खातू या फिर जौन भी कंपोस्ट है ओला 5-10 टन हेक्टर में पाछू के दर ले खेत की तैयारी के समय में देना चाहिए। हमारे किसान भाई मल्ला अगर फास्फोरस पी और पोटास के अगर पूरा पूरा मात्रा और नाइट्रोजन के आधा मात्रा बुवाई के समय में देवें, और नाइट्रोजन के जौन बाचे आधा मात्रा फसल के 25-35 दिन के अवस्था में पहली गुड़ाई के बाद और पर्याप्त नमी होए में देना चाहिए। उर्वरक डारे के बाद हल्का सिंचाई अगर आवश्यकता हुए तो देना जरूरी होता है, या तो फिर वर्षा के लाभ मिले है तो ओखर प्रभाव में बेहतर हो जाते कि आप खातूला दे सकते।

0: ये उपाय ला अपनाए ले खरपतवार नियंत्रण बेहतर ढंग से होते और पौधा में वृद्धि बढ़ोतरी घला अच्छा ढंग ले होता है और खरीफ फसल के उपज और गुणवत्ता में वृद्धि बढ़ोतरी घला होते। तो भाई हम तो ये प्रकार ले बताएं कि हम कि जोन भी हमारे किसान भाई मन है समय ले समय निदाई गुड़ाई के काम ला करें और उर्वरक प्रबंधन ला करें एक व्यवस्था करे ले जरूर लाभ होते और पैदावार ज्यादा होते उत्पादन ज्यादा होते हमारे किसान भाई मन लाभ हो ही इला अपनाना बड़ जरूरी है भाई। देखो भाई हम तो एक चलती फिरती और जल्दीबाजी में जोन भी उर्वरक प्रबंधन के बात करें आज के भेंट वार्ता के विषय खाला बड़ा बढ़िया हवा है बहुत अच्छा विषय हवा है जी मैं देखो फोरिया के हमार जन विशेषज्ञ हैं बताही आप मल्ला कि खरीफ फसल में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत पोषक तत्व प्रबंधन कैसे ढंग करना चाहिए ये विषय में जानकारी देवत हमारे डॉक्टर एस पी सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा के मन हमें और हम गोट बात करें अब इला सुनो आप मन चेत लगा के और ये भेंट वार्ता के लाभ ला जरूर उठाओ ले बस सुनो ये भेंट वार्ता ला। किसान भाई हो खरीफ फसल में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत पोषक तत्व प्रबंधन ये विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवे डॉक्टर एस पी सिंह जी मन जौन हवे वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा में। तो सबले पहले स्वागत कर लेथन डॉक्टर एस पी सिंह जी आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे आप मन ला राम राम
1: राम राम धन्यवाद।
0: सबले पहले जानना ये चाहतन कि खरीफ फसल में जैसे कि प्राकृतिक खेती के बात आते तो ये सबले पहले बताया कि प्राकृतिक खेती होते का इला पहले हमारे किसान भाई बता दे फुरिया के
1: प्राकृतिक खेती प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग का करने से उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं और ये इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त और विष मुक्त खेती है। इस खेती में केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती देसी गाय आधारित एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है जो कार्यात्मक जैव विविधता के साथ फसलों पेड़ों पशुओं को एकीकृत करती है जिससे एक देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र के उपयोग से लगभग 30 एकड़ खेती की जा सकती है।
0: अच्छा
1: प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कृषि रसायनों जिसको कीटनाशक बोलते हैं कि का उन्मूलन पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ खेती करना और मृदा की उर्वरता और कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करना शामिल है। इस खेती के अंतर्गत जो पोषक तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं का उपयोग पोषक तत्व प्रबंधन एवं कीटनाशक के रूप में किया जाता है।
0: अच्छा
1: प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर गौमूत्र से निर्मित जीवामृत घनजीवामृत संजीवक अमृत पानी पंचगव्य दस पंच समृद्ध पंचगव्य और गोबर की खाद कंपोस्ट आदि के उपयोग से इसका पोषक तत्व प्रबंधन किया जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी जब से हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया है तब से इनकी गुणवत्ता से प्रभावित हुए हैं जिससे हमारा पर्यावरण भी और पर्यावरण के साथ साथ जो जितने भी जीवधारी हैं या मनुष्य है उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो आज की आवश्यकता है कि जैसे हमारी कृषि लागत बढ़ रही है कृषि लागत को भी कम करना है और प्राकृतिक संसाधनों का भी हम उपयोग करना है और हमको अच्छी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना है जिससे कि पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे।
0: बढ़िया मतलब आज के समय में एक मांग घला है कहे जाए तो प्राकृतिक खेती के ये समय एक उपयोग करना बहुत अच्छा रही कहे जाए तो खरीफ फसल में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत पोषक तत्व कौन कौन से आप बताना चाहता था।
1: देखिए हमारी फसल को प्रमुख रूप से 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 18 पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण से हमारे पौधे को मिल जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन जो है हमारा वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोजन जल से प्राप्त हो जाता है। दूसरा नाइट्रोजन स्फुर और पोटास है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जिंक कॉपर बोरान नाइट्रोजन सब पूरे होते हैं ऐसे 18 पोषक तत्व होते हैं। ये 18 पोषक तत्व अमुख रूप से हमारी मृदा में खेत की मिट्टी में या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं लेकिन जब इनका हम उपयोग करना है तो हमको क्या है कि ये प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाएंगे तो जिसके कारण मृदा की जो जैविक क्रियाशीलता बढ़ेगी उसमें सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ेगी तो इससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है प्राप्यता बढ़ जाती है उसके कारण उन पोषक तत्वों का जड़ों के माध्यम से पौधा अवशोषण कर

0: देता है और अवशोषण करके वो अपनी आवश्यकता इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमको सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाने के लिए हमको जो प्राकृतिक खेती के जो पोषक तत्व प्रबंधन के घटक हैं, जैसे कि जीवामृत है, घनजीवामृत है, संजीवक है, अमृत पानी है, पंचगव्य है या समृद्ध पंचगव्य, इनका हमको उपयोग करना ही पड़ेगा। तभी हमारे मृदा किया स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी अच्छी रहेगी, मृदा की उर्वरता भी अच्छी रहेगी। जब उर्वरता अच्छी रहेगी तो हमारे पोषक तत्व प्रदाय करने की मृदा की क्षमता भी अच्छी रहेगी और हमारी फसल की वृद्धि भी अच्छी होगी।
1: तो ये जीवामित्र बनाए खातिर एकर विधि का है, का जीनिस की आवश्यकता पड़ते? अच्छा ढंग से हमारे किसान भाई सरल ढंग से समझा कि का जीनिस के उपयोग करना होते बनाना है। तो
0: देखिए, जीवामृत बनाने के इसके लिए हमको पहले 250 लीटर का एक ड्रम लेना पड़ता है, प्लास्टिक के ड्रम ले लें, जो उसमें 10 किलोग्राम देसी गाय के गोबर को लें। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें भी हमको बनाना है उसमें हमको देसी गाय के गोबर को और देसी गाय के मूत्र का ही उपयोग करना है, दूसरी गाय का इसमें नहीं है। देसी गाय के 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलोग्राम गुड़ और 2 किलोग्राम बेसन या किसी भी दाल का आटा हो, उसको लेकर के एक सजीव मृदा बोलते हैं, सजीव मृदा या तो किसी खेत की मिट्टी हो या किसी पेड़ के नीचे जो कि मिट्टी को ले लेते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का सक्रियता अधिक होती है। उस 1 किलोग्राम मिट्टी को लेकर के 250 लीटर हम ड्रम बताया उसमें डालते हैं और उसको 200 लीटर पानी से उसको पूरा भर देते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: और भरने के बाद में उसको ढक देते हैं, लेकिन उसको सुबह शाम हम एक लकड़ी की छड़ से और घड़ी के जो क्लॉक वाइज जिसको बोलते हैं उस दशा में हम सुबह शाम उसको घुमाते हैं 5 मिनट। और सुबह शाम घुमाने से क्या है, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी ड्रम में प्रोड्यूस होती है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है जिसको गति ऊर्जा बोलते हैं और वो प्रोड्यूस होती है तो उसमें क्या है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है क्लॉक वाइज सुबह और शाम 5-5 मिनट घुमाना। और ये 9 दिन में ये प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। 9 दिन में तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है।
1: अच्छा।
0: और इसको हम 12 दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और डालने के बाद फिर हम दूसरा तैयार कर सकते हैं।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: ये इसीलिए एक गाय से जो 30 एकड़ खेती जो हम इस प्रकार से सफलता पूर्वक कर सकते हैं और खेत में इसको 15-15 दिन के अंतराल पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत लाभकारी है। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह इससे सूक्ष्म जीवों का निवेश होता है और उनकी सक्रियता बढ़ती है और इससे सक्रियता बढ़ने से अविश्वसनीय वृद्धि होती है उनकी।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: मिट्टी को ये सबसे बड़ी है, ये सॉफ्ट बना देता है, कोमल बना देता है।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: और उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिससे केंचुओं का उसमें काफी विकास होता है। हाँ। तो केंचुआ 15 मीटर नीचे तक जाते हैं, 15 मीटर ऊपर तक आते हैं जिससे कि वो केंचुए होल बनाते हैं अपने साथ साथ। तो उससे क्या है, पूरा बरसात का पानी है वो नीचे चला जाता है जिसके कारण इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। जल इसको कह सकते हैं जल संचय में वृद्धि होती है।
1: अच्छा।
0: इसके साथ साथ हमारे मृदा में मृदा बातन जिसको सॉइल एरेशन बोलते हैं, तो मृदा बातन में भी वृद्धि होती है। मृदा में कभी देखते हैं कि मृदा में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बरसात के पहले पानी के साथ जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है टूट करके आती है, तो उसका भी स्थिरीकरण हमारे इस खेती मिट्टी में अच्छा होता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: पोषक तत्वों का उपलब्ध स्वरूप भी बदल रहा है। जो पोषक तत्व मृदा में होते हैं वो कई रूप में होते हैं, लेकिन जब ये सूक्ष्म जीव जो है उनको उनका फॉर्म या रूप को चेंज करके हमारे जड़ों के माध्यम से पौधे को उपलब्ध करा देते हैं।
1: अच्छा।
0: जिससे हमारे पौधे की जो पोषक तत्व प्राप्यता अच्छी बढ़ जाती है और हमको अन्य स्रोतों पर जैसे रासायनिक उर्वरक है उस पर निर्भर नहीं होना पड़ता।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा,
0: इससे हमारी बचत होती है।
1: ये बताया अपन जीवामृत
0: जी
1: बनाए के विधि और उपयोग के तरीका।
0: जी जी।
1: अब घन जीवामृत के गहरा मतलब बता देता है, घन बनाया जाए।
0: घन जीवामृत जो है एक ये जीवामृत का ही रूप है।
1: अच्छा।
0: हाँ। लेकिन इसमें जो है ये ड्रम में तैयार नहीं किया जाता है।
1: अच्छा।
0: ये केक के रूप में होता है। इसमें जो क्या है कि हम एक 100 किलोग्राम देसी गाय को गोबर को लेते हैं, उसमें 10 किलोग्राम दिया था ड्रम।
1: अच्छा,
0: में इसमें 100 किलोग्राम देसी गाय के गोबर को लेते हैं और जो कि 4 से 5 दिन पुराना हो।
1: अच्छा।
0: थोड़ा सूखा हो हवा में सुखा लेते हैं।
1: हाँ।
0: जिसमें 1 किलोग्राम गुड़ डालते हैं, 1 किलोग्राम बेसन डालते हैं और 3 लीटर गौमूत्र डालते हैं और 250 ग्राम वो सजीव मृदा है, किसी पेड़ के

0: नीचे से या मेड़ की मिट्टी को लेकर के
1: अच्छा
0: उसमें डाल देते हैं और फिर इसको आपस में खूब अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिलाने के बाद में इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद में इसको करीब 48 से 50 घंटे के लिए छाया में सुखा फैला देते हैं।
1: अच्छा।
0: और जब ये थोड़ा सा हो जाता है तो इसको 10-15 दिन में तैयार हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और 10-15 दिन में तैयार होने के बाद में इसको फिर इसमें 250 किलोग्राम गोबर मिला लें या कुछ भी मिला करके पूरे एक एकड़ में के लिए पर्याप्त होता है। एक एकड़ तो ये इसमें 6 महीने तक इसको कोई खाद की जरूरत नहीं होती है।
1: अच्छा, अच्छा,
0: ये बहुत अच्छा है। जैसे हम दूसरे DAP या यूरिया या पोटाश को छिड़कते हैं उसी प्रकार से छिटक करके
1: अच्छा,
0: इसका
1: अच्छा।
0: हम उपयोग कर सकते हैं।
1: ये
0: इसमें उपयोग करने से हमारे सीधे मृदा के संपर्क में जाता है तो वहाँ ये मृदा के उसके सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से उसकी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे मृदा के जो पोषक तत्व प्रदाय करने की क्षमता बढ़ जाती है। जी
1: अच्छा अच्छा
0: जी।
1: ये संजीवक के नाव घला ले रहा अपन, एकर उपयोगिता का है या वो बनाए की विधि घला बता देता कैसे दिया?
0: 500 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम में
1: 300
0: लीटर पानी लेते हैं।
1: अच्छा।
0: 100 किलोग्राम देसी गाय के गोबर को लेते हैं और 100 लीटर देसी गाय के गौमूत्र को लेते हैं, मूत्र लेते हैं, उसमें 500 ग्राम गुड़ डालते हैं और इसको मिलाते हैं, अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के लिए 10 दिन के लिए उसको थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए या किण्वन के लिए उसको छोड़ देते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, किण्वित हो जाता है। 10 दिनों बाद जब ये तैयार हो जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है, तो उसमें उसका 20 गुना पानी,
1: अच्छा
0: 20 गुना पानी उसमें मिला देते हैं और 20 गुना पानी, जैसे कि हमने 500 लीटर का ड्रम था उसमें 300 लीटर मिलाया तो हमको उसको 20 गुना मिला देते, हमको 6000 लीटर जो पानी उसका तैयार हो जाएगा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो उसको एक एकड़ जो पानी के हम खेत में पानी अपनी फसल में चलाते हैं उसी पानी के साथ
1: अच्छा,
0: छोड़ देंगे
1: अच्छा।
0: तो आपका पूरा पानी जो है खेत का
1: बढ़िया
0: हो जाएगा और उसमें पूरे में संजीवक या सूक्ष्मजीवों की शक्तियां बढ़ जाएगी, मृदा की उर्वरता बढ़ जाएगी, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और हमको किसी भी कार्बन रासायनिक खाद की जरूरत पड़ेगी किसी की।
1: आज के समय में बहुत अच्छा एक उपयोग अगर करत है किसान भाई में तो फायदा है भाई। अमृत पानी के घला नाम ले रहा, जैसा नाम है तैसा काम है कि नहीं है कर?
0: जितने भी है हमारे ये इनके नाम में ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हमारे पर्यावरण अनुकूल है ये
1: जी।
0: अमृत पानी बनाने के लिए हमको 10 किलोग्राम देसी गाय के गोबर को लेना होगा और 500 ग्राम शहद और अच्छी तरह से मिलाकर एक क्रीमी पेस्ट तैयार कर लेते
1: अच्छा,
0: हैं
1: अच्छा, अच्छा।
0: और जिसमें 250 ग्राम देसी गाय का घी लें और तेज गति से अच्छी तरह से मिलाएं इसमें
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: इसको घी को अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा, 250 ग्राम घी को और 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में सिंचाई के पानी के साथ इसका मृदा के ऊपर छिड़काव भी किया जा सकता है।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: और इसकी दूसरी खुराक फिर दूसरी बार डालना है हमको 30 दिन के बाद फिर डाल सकते
1: अच्छा,
0: हैं
1: अच्छा, अच्छा।
0: और इसको कतार जो पौधे हैं फसल खड़ी है तो उसको कतार में भी इसको उपयोग किया जा सकता है सिंचाई के साथ साथ। तो ये इसके कारण जो ये हम अमृत पानी बिल्कुल अमृत के समान ही हमारी फसलों में काम करता है, पोषक तत्व प्रबंधन में अच्छा काम करता है।
1: पंचगव्य घला ना बताया रहा अपन, एकर उपयोगिता बता देता वो बनाए की विधि घला बता देता तो अच्छा होती है।
0: देखिए पंचगव्य जैसे हम इसके नाम से जान रहे हैं पंचगव्य हाँ। और पंचगव्य का जो हमारी जो देसी गाय है उस गाय के 5 जो अवयव हैं या तत्व हैं उनका हम उपयोग करते हैं, 5 उत्पादों का, जिसमें गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही है और घी।
1: अच्छा,
0: ये 5 का करते हैं
1: हाँ।
0: इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है।
1: अच्छा।
0: कि इसमें 5 किलोग्राम ताजा देसी गाय का गोबर लें, ताजा फ्रेश लेना है इसमें, और 3 लीटर गौमूत्र लेना है और 2 लीटर गाय का दूध लेना है।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: और 2 लीटर दही लेना है और 1 किलोग्राम मक्खन या घी ले सकते
1: अच्छा,
0: हैं
1: अच्छा,
0: इसको अच्छी तरह से मिला लें
1: अच्छा,
0: और 7 दिन के लिए इसको फर्मेंटेट के लिए छोड़ दें, फर्मेंटेशन अच्छा, के लिए किण्वन के लिए छोड़ दें। घोल को नियमित रूप से 5 से 10 मिनट प्रतिदिन, दिन में 2 बार सुबह शाम जो लकड़ी की छड़ से उसको घड़ी के क्लॉक वाइज उसको घुमाएं हिलाएं और फिर 3 लीटर पंचगव्य को 100 लीटर पानी के साथ घोलकर
1: अच्छा।
0: 1 एकड़ में सिंचाई के पानी के साथ उसको मृदा के ऊपर छिड़क सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 20 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ पंचगव्य की आवश्यकता होती है। तो हमको इस पंचगव्य का उपयोग जो है इसके लिए पोषक तत्व प्रबंधन के लिए, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाने के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए, ये

0: बहुत अति आवश्यक है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रकार देखे जाए तो आप मंत्री तो बहुत अगन खजाना है और बहुत अगन पोषक तत्व के औ रखे हो अपन कई ठक, जैसे कि बताया रहा अपन, फिर समय के अभाव जो आज खरीफ फसल में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताया अपन, विस्तार बताया, जानकारी दिया। हमारे स्टूडियो में आकर बर डॉक्टर एस पी सिंह जी, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी सुनन भेंट वार्ता, खरीफ फसलों फसल में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत पोषक तत्व प्रबंधन, जानकारी देवत्री ने डॉक्टर एस पी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा के मन नहीं नमय, इनकर से हम गुड बात करें। भाई देखो, गुड बात हो गए, भेंट वार्ता घला हो गए, अब कहिया कि गीत नहीं सुना थे, तो गीत सुनना है तो मोर संग चलो जी, ये गीत लगावा था मैं लक्ष्मण मसूरिया उनकर संगवारी मन।

मोर संग चलव जी, मोर संग चलव रे। ये सुघर गीत ला गावत रही ने लक्ष्मण मसूरिया और उनकर संगवारी मन। अब आवो बता दी आप मल्ला समसामयिक कृषि परामर्श और कृषि सलाह। संगवारी हो, अगस्त महीना में जम चलत हवे ये समय किसानी के बूता में अगर कहूँ देर अबेर हो जावे तो धान के रोपाई तो 15 अगस्त तक करे जा सकत हवे। अगर देर अबेर हो जावे तो पौधा के रोपाई बर जो पौधा ले पौधा की जो दूरी हवे एला कम ले कम रखें और 3 ले 4 पौधा के उपयोग ला करे तो अच्छा हुई। किसान भाई मल्ला सलाह दे जात हवे कि धान के क्रांतिक अवस्था में अनुशंसित मात्रा में ही नत्रजन की बुरकावला करें। खेत में हरी काई के अगर प्रकोप दिखत हवे तो पानी के जो साधन हवे जिनकर मेरा तो पानी ले तो बाहर निकाल देवें और जिन जगह ले पानी भीतर आवत हवे वहाँ कापर सल्फेट ला पोटली में बांध करके रखें जेकर ले वो बढ़िया ढंग से हो जाए। धान में शीघ्र ब्राइट के अगर रोग के अगर दिखत हवे लक्षण है तो हेक्सा कोनाजोल नामक जो कवकनाशी दवाई है 1 मिलीलीटर लीटर भर के हिसाब ले छिड़काव ला करें। और एक बात और ध्यान रखें, धान के खेत में लगातार पानी ला भर के झन रखें। धान में यूरिया के भुरकाव करें के पहले खेत में पानी की मात्रा ला कम कर देवें। गोंदली ला खेत में जो भी है उकर रुपाई करें। कुकरी मुर्गी मल्ला कृमि रोग ले बचाव बर हर 3 महीना में कृमि नाशक दवाई ला खिलावें। पशु मल्ला खुरहा चपका है रोग, गलघोटू रोग है, एकर टीका जरूर लगवाना है। भेड़ बकरी मल में PPR जो रोग होते और चेचक जो होते फड़किया रोग घला होते एकर टीका अगर नहीं लगे हवे तो ला जरूर लगावे। जाए ले पहले मौसम ला जानते हो आप, मंडी के भाव ला बता देते हैं। बिलासपुर मंडी के भाव हवे निमऊ 6,000 ले 6,200 रुपया, पपीता आरम पपई 2,000 ले 2,200 रुपया, धर्मी है 1,200 ले 1,200 रुपया, नाशपाती है 1,500 ले 1,700 रुपया, बरबट्टी है 2,200 रुपया ले 2,400 रुपया, पत्ता गोभी 1,600 ले 1,800 रुपया, भाटा है 1,400 ले 1,600, आलू 2,300 ले 2,500 रुपया, सेव है 13,000 ले 13,200 रुपया, पताल है 1,800 ले 2,000 रुपया।

0: हाँ 3300 ले, 3500 संतरा है, 4500 ले, 4800 रुपया, ये तो हुई इस मंडी भाव। अब जाए के बेरा हो गए, महंगू भैया ला दोबिदा, ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जमा संगवारी मल्ला, महंगू भैया के राम राम जय जोहार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, अब हम संसद समीक्षा के लिए जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर

डिजिटल, क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई की हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि

समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वो तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP योजना का संचालन करता है।
इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र

0: विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है रजनीगंधा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ गीत हमारी जिंदगी में ऐसे शामिल हो जाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि उन्हें पहली बार कब सुना था। कभी सफर में, कभी रेडियो पर, तो कभी यूं ही किसी शांत शाम में, और फिर उनकी धुन हमारे भीतर कहीं ठहर जाती है। लेकिन इन यादगार धुनों के पीछे जिन लोगों की साधना होती है, उनकी कहानी हम अक्सर नहीं जान पाते। आज 3 अगस्त को एक ऐसे ही संगीतकार की जयंती है जिनका नाम है जयदेव। शोहरत से कुछ दूर रहकर भी उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को ऐसी धुनें दी जिन्हें आज भी सुने तो मन ठहर सा जाता है। तो आज रजनीगंधा में गीतों के साथ साथ क्यों ना उस शख्स को थोड़ा करीब से जाना जाए जिसने इन गीतों को सुरों में ढाला। श्रोताओं, कहानी शुरू होती है 3 अगस्त 1918 से, जब पूर्वी अफ्रीका के नैरोबी में जयदेव का जन्म हुआ। बचपन के कुछ वर्षों बाद उनका परिवार भारत आ गया और उनकी परवरिश पंजाब के लुधियाना में हुई। संगीत से उनका लगाव बहुत छोटी उम्र से ही था। जरा सोचिए, उस समय ना आज जैसे साधन थे, न इतनी आसानी से संगीत सीखने के मौके। फिर भी एक बच्चे के मन में सुरों के लिए ऐसी ललक थी जो आगे चलकर उसके पूरे जीवन की पहचान बन गई। रास्ते आसान नहीं रहे, लेकिन जयदेव ने संगीत का साथ नहीं छोड़ा। शायद उनकी अपनी जिंदगी के इस जज्बे की झलक हमें इस गीतों में भी महसूस होती है। फिल्म हम दोनों, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी का गीत और संगीत जयदेव का, पर्दे पर देव आनंद।

आपने जयदेव की धुन सुनी। अब उनके जीवन की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। संगीतकार बनने से पहले जयदेव के मन में अभिनेता बनने का सपना भी था। कम उम्र में ही फिल्मों की दुनिया ने उन्हें आकर्षित किया और वे बम्बई तक जा पहुंचे। कुछ फिल्मों में बाल कलाकार और अभिनेता के रूप में काम भी किया, लेकिन जिंदगी शायद उनके लिए कोई और रास्ता चुन चुकी थी। स्वास्थ्य की परेशानियां आई, संघर्ष आया और अभिनय का सफर पीछे छूटता गया। मगर कई बार एक सपना अधूरा रहकर ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाता है। जयदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वे पूरी तरह संगीत की ओर मुड़ गए। आगे चलकर उनकी धुनों में प्रेम भी आया, विरह भी और लोक संगीत की मिट्टी की महक भी। इसका बेहद खूबसूरत उदाहरण है फिल्म रेशमा और शेरा का संगीत। इसी फिल्म के लिए जयदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। तो चलिए सुनते हैं फिल्म रेशमा और शेरा, जो वर्ष 1971 में आई थी। इसका गीत आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा बाल कवि बैरागी ने और संगीत जयदेव का। पर्दे पर प्रमुख भूमिकाओं में सुनील दत्त और वहीदा रहमान।

कहते हैं प्रतिभा अपनी जगह है, लेकिन उसे निखारने के लिए साधना जरूरी होती है। जयदेव के जीवन में भी ये साधना बहुत गहरी थी। उन्होंने उस्ताद अली अकबर खां से संगीत सीखा और उनके सहायक के रूप में भी काम किया। बाद में वे सचिन देव बर्मन के सहायक बने। यानी जिन धुनों को हम बाद में इतनी सहजता से सुनते हैं, उनके पीछे बरसों की सीख, मेहनत और संगीत को समझने की तपस्या थी। और एक बात जयदेव को खास बनाती है, बड़ी सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपने संगीत को बाजार के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की। शायद इसी वजह से उन्हें उतनी फिल्में नहीं मिली जितनी उनकी प्रतिभा की हकदार थी, लेकिन जो मिला उसमें उन्होंने अपनी अलग छाप जरूर छोड़ी। उनकी यही संवेदनशीलता फिल्म गमन के संगीत में बहुत गहराई से महसूस होती है। घर छोड़कर बड़े शहर में रोजी रोटी तलाशते इंसान की बेचैनी, भीड़ में उसका अकेलापन और भीतर चलती उथल पुथल, सब कुछ जैसे इस गीत में उतर आया है। फिल्म गमन, वर्ष 1978 की फिल्म। गायक सुरेश वाडेकर, गीतकार शहरयार और संगीतकार जयदेव। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार फारूक शेख और स्मिता पाटिल थे।

0: श्रोताओं, साल 1961 में हम दोनों की सफलता ने जयदेव को एक नई पहचान दी। उम्मीद थी कि अब बड़े बैनरों की फिल्मों की कतार लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयदेव ने कभी लोकप्रियता के लिए अपने संगीत से समझौता नहीं किया। वे मानते थे कि धुन ऐसी होनी चाहिए जो कहानी का हिस्सा बने, केवल बाजार की मांग पूरी ना करे। यही वजह रही कि उन्हें फिल्में भले कम मिली, लेकिन हर फिल्म में उनका संगीत एक अलग पहचान बन गया। उनकी धुनों में दिखावा नहीं, बल्कि सादगी और सच्चाई सुनाई देती है। वर्ष 1977 में आई फिल्म घरौंदा इसका एक सुंदर उदाहरण है। महानगर में अपने छोटे से घर का सपना देखने वाले युवाओं की कहानी पर बनी इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही अपने लगते हैं। भूपेंद्र सिंह और रूना लैला ने इस गीत को गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है। तो सुनते हैं संगीतकार जयदेव के दिए संगीत में इस गीत को।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

जयदेव केवल एक सफल संगीतकार ही नहीं थे श्रोताओं, बल्कि एक नए कलाकारों की प्रतिभा को पहचानने वाले इंसान भी थे। उन्होंने कई नई आवाज़ों को अवसर दिया। यही नहीं, उर्दू शायरी और हिंदी कविता के प्रति उनका विशेष लगाव था। शायद इसी कारण उनके गीतों में शब्द और संगीत एक दूसरे के पूरक बनकर सामने आते हैं। उनके संगीत में कभी अनावश्यक शोर नहीं मिलता, बल्कि हर सुर अपनी जगह पर ठहर कर दिल से बात करता है। यही विशेषता उन्हें अपने समकालीन संगीतकारों से अलग बनाती है। तो अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही मन जैसे प्रकृति की गोद में पहुंच जाता है। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जान निसार अख्तर ने इसे लिखा है। फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत।

जयदेव को उनके जीवन काल में वो व्यावसायिक सफलता शायद नहीं मिली जिसके वे अधिकारी थे, लेकिन संगीत की दुनिया में उनका सम्मान हमेशा बहुत ऊंचा रहा। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भी जब भारतीय फिल्म संगीत के सबसे संवेदनशील और सुरमय संगीतकारों की बात होती है तो जयदेव का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा कलाकार वही होता है जो परिस्थितियाँ कैसी भी हों अपनी कला की गरिमा बनाए रखे। यही वजह है कि उनके बनाए गीत आज भी नए श्रोताओं के दिल तक उसी आत्मीयता से पहुँचते हैं। आज के रजनीगंधा का अंतिम गीत भी उनकी इसी संगीत यात्रा को सलाम करता है। दूरियां फिल्म, गायक भूपेंद्र सिंह, साथ में अनुराधा पौडवाल, गीतकार सुदर्शन फकीर।

संगीतकार जयदेव ने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा संगीत समय का मोहताज नहीं होता। धुनें अगर दिल से निकली हो तो पीढ़ियां पार करके भी लोगों के मन में गूंजती रहती है। उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब आज के रजनीगंधा से अपनी रेडियो साथी श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब हम समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने

0: की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
5: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय

0: को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
1: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में 2D फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचारों का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है जयदेव, फिल्म का नाम है लैला मजनू।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं, और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो

शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है। लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952, फिल्म आ

0: फिल्म कोहिनूर।
1: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो रंग लो।
0: और फिर फिल्म मदर इंडिया।

को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं। बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

20 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा किया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरी जिंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी बंदगी की आस में एक आस तुम भी हो। तुम क्या हो मेरे, कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर जिंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। मैं दिन हूँ, मेरी शाम हो तुम, मैं नींद हूँ, मेरा ख्वाब हो तुम, मैं लब हूँ, मेरी बात हो तुम, मैं तब हूँ जब मेरे साथ।

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में।

पूछती है मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

पलकों की मुडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप, गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब तक तो था उससे बहुत गहरा था रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या।

0: मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या? ये जो सुन रहे हो तुम इतने गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या?
1: तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है, फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे, कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलटकर किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नजर अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे मायूस करने का। मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपनी किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी ना।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: लेट्स स्टार्ट द फन।
1: 3 अक्टूबर 1957 वो सुनहरा दिन जब शुरू हुआ था सुरों और शब्दों का सुनहरा कारवां। 3 अक्टूबर हम मना रहे हैं विविध भारती की सालगिरह। हवा महल की सुनहरी कहानियाँ, छाया गीत में सजे नरमो नाजुक गीत, सुरों की सरिता, संगीत सरिता, सखी सहेली, दिलों को छूती विविध आवाजें।
2: साज हो तुम आवाज़ों।
1: किसी के लिए विविध भारती यादों का खजाना, किसी के लिए दोस्ती की पहचान, किसी के लिए है विविध भारती परिवार के सदस्य। तो बताइए आपके लिए क्या है विविध भारती? विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपके हमसफर बने? विविध भारती ने आपको क्या सिखाया? विविध भारती से आप कब और कैसे जुड़े? बताइए हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग में। सखियां बताएं अपने दिल की बात, साझा करें विविध भारती से जुड़ी सुनहरी यादें। रिकॉर्डिंग मंगलवार दिन में 11 बजे से। टेलीफोन नंबर 400-24662, STD कोड 022। प्रसारण 3 अक्टूबर दिन में 3 बजे।

0: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब हम हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक

0: 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question